0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर प्रोग्राम सुप्रभात लेकर आपके साथ रहेंगी ज्योति आनंद। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगी चंद्रानी मुखर्जी। 8 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे और 8:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगी ज्योति आनंद। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार आप सुनेंगे। 9:02 पर प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने, प्रोग्राम के साथ चंद्रानी मुखर्जी रहेंगी आपके साथ। 10 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस।

प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ आपके साथ रहेंगे उत्कर्ष। 11 बजे समय रहेगा हिंदी में मुख्य समाचार का। 11:02 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के एपिसोड के साथ आपके साथ रहेंगी बबीता त्रिपाठी। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक लेकर आपके साथ होंगे उत्कर्ष।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

Hey listeners, good morning and welcome. आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर. आज का बड़ा प्यारा सा दिन है, इतनी प्यारी सी सुबह है, सड़कें धुल चुकी हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है. कहीं कहीं इलाकों में रात से हो रही है और कहीं कहीं सुबह शुरू हुई है और बहुत ही खुशनुमा प्यारा सा लवली सा मौसम है. और मौसम ऐसा हो जाना तो दिल तो अच्छा हो ही जाता है, खुश हो ही जाता है. कार्यक्रम सुप्रभात में आपका स्वागत करती हूँ मैं ज्योति. आज की मंगलमयी सुबह में 6:14 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर. और यही वो फ्रीक्वेंसी है जहां आपकी और हमारी वेवलेंथ मिलती है, है ना, है ना. तो आप बता सकते हैं आपके आसपास का मौसम कैसा है, आपको कैसा लग रहा है. और हम सब चाहते हैं, हमारा दिल यही चाहता है कि जो अच्छे अच्छे दिन हैं और हमारी चाहते हैं वो हमेशा पूरी होती जाए. मगर लाइफ में ना ज़रूरत और इच्छा में एक अंतर होता है और उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है. उसी के बारे में आज हम बात करेंगे आकाशवाणी रेनबो पे. और सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इन्जॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गाना. उसके बाद ये बातचीत जारी रखते हैं.

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। और प्यारी सी सुबह तो मैंने आपको बता ही दी है, अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छा सा और प्यारा सा मोड़ देने के लिए हमें कुछ बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो हमें हर कुछ थोड़े से टाइम के बाद ना कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारे जीवन है ना, उसमें जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। मगर जो हमारी वॉन्ट्स हैं ना, जो हमारी इच्छाएँ हैं, अगर उनको हमने ज़्यादा होने दिया ना, तो सच में हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे और हमें लगेगा कि हम कितना भी कमा लें, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमें खाना खाना है तो हम मतलब खाना इज़ अ बेसिक नीड, वो हमारी नीड है। मगर अगर हम ये कहें कि हमें पर्टिकुलर कोई चीज़ ही खानी है, हमें पिज्ज़ा ही खाना है, या हमें कोई पर्टिकुलर कोई एक फेवरेट डिश ही खानी है, तो वो हमारी जो है ना वो इच्छा हुई, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो क्या आप सच में खुश हो जाओगे? आप मुझे बता सकते हो कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आपको सच में खुशी मिलती है? चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी रुतबा हो, कितना भी आपके पास कोई भी पोजीशन हो, बट क्या आपको वो सच्ची खुशी और सुकून मिलता है? तो ये जो बैलेंस है ना नीड्स और वॉन्ट्स में, ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी इच्छाएँ ज़्यादा हो गई ना नीड्स से ज़्यादा, तो हम सच में मुश्किल में आ जाएंगे। इसी के बारे में बात करेंगे और एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि किस तरह से अपने जीवन में हम अपनी नीड्स पर फोकस करते हुए, अपनी इच्छाओं को लिमिटेड करते हुए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना सकते हैं।

चलो थोड़ा सा जज्बा आज की सुबह में फिर से जगाते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें बार बार करते रहनी चाहिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहना चाहिए। और सच्ची बताऊँ, ये बातें करके ना सिर्फ आपको ही नहीं, मतलब मुझे भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें दोबारा याद आ जाती हैं और वो सभी चीज़ें करने का दिल करता है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ तो आप क्या खुश हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग कहेंगे हाँ, मगर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो नीड्स हैं वो सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी होती हैं, उन्हें हमें पूरा करना होता है। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज हमारे पास आया है, मतलब रियलिटी है। और डॉली लिखती हैं, पूछती हैं कि हाय ज्योति, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, गुड मॉर्निंग। और वो लिखती हैं कि अगर सारी विशेस पूरी हो जाएं तो लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं रह जाएगा कुछ नया करने का। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी तो इच्छाओं का इनकम्प्लीट रहना, पूरा ना होना, और कभी कभी हमारी मनपसंद इच्छा हमें ना मिलना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी नीड्स पर तो फोकस कर ही सकें और फिजूल खर्ची से भी बच सकें। और जब हाँ आपको लगे कि हाँ एक सर्टेन लेवल आपने क्रॉस कर लिया है, फिर अपनी आप इच्छाएं ज़रूर पूरी कर सकते हैं, लाइफ है, एंजॉय भी करना चाहिए। मगर ऐसा ना हो कि विशेस को आप पहले रखें और अपनी नीड्स को भूल जाएं, ऐसा अक्सर होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, एक टीचर और स्टूडेंट की वार्तालाप चल रही थी और उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैं सबक सिखाता हूँ। तो दोनों बाजार पहुँचे और गुरु ने शिष्य को कुछ पैसे दिए और कहा कि जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम खरीद लो। तो जो स्टूडेंट था ना, जो शिष्य था, उसने सबसे पहले एक महंगा सा अच्छा सा लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन खरीदा, फिर उसने अपनी पसंद के बहुत अच्छे ब्रांडेड शूज़ खरीदे, घड़ी, कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने खरीदी जो उसके पास नहीं थी और उसकी इच्छा थी। तो कुछ ही देर में सारे पैसे खत्म हो गए। वापस लौटते समय एक बूढ़ा आदमी उन्हें सड़क पर बैठा मिला, तो उसकी चप्पल टूटी हुई थी और वो दवा खरीदने आया था, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। अब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हारे पास अभी कुछ पैसे होते तो तुम उसकी मदद कर पाते? तो शिष्य ने सिर झुका लिया। उसने कहा, गुरु ने उससे कहा कि तुमने अपनी चाहते तो खरीद ली, लेकिन अपनी ज़रूरतों को समझा ही नहीं। और फिर गुरु ने ज़मीन पर दो शब्द लिखे, नीड और वांट, यानी कि हमारी ज़रूरत और हमारी इच्छाएं। उन्होंने कहा, ज़रूरत वह है जो जीवन को आगे बढ़ाती है और चाहत वो है जो जीवन को सुंदर बना सकती है। दोनों गलत

नहीं है, लेकिन जब चाहत जरूरत बन जाती है तब इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो उस दिन शिष्य को ये बात काफ़ी अच्छे से समझ आ गई कि हमें अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ पैसे ज़रूर सेव करने चाहिए ताकि किसी और की नीड, किसी और की ज़रूरत को भी अगर हमें ज़रूरत पड़े पूरी करने की तो वो हम कर पाएँ। आपके और बहुत सारे मैसेजेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से आप हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम सुप्रभात में, और आपके मैसेजेस में शामिल करूँगी कि आपके दिल दिमाग में क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बने रहिए मेरे साथ, 6:30 हो चुके हैं, आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं ज्योति के साथ। इंजॉय करते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गाना, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी सुबह है आज की, और आज के दिन को और आने वाले हर दिन को हम और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ। आप सुन रहे हैं और 6:43 बाय द स्टूडियो क्लॉक, अभी भी हमारे पास टाइम है और अपनी ज़िंदगी को हम यूं ही खुशनुमा बना सकते हैं और मतलब बस छोटा सा बैलेंस ही तो बनाना है अपनी नीड्स में और अपनी पॉइंट्स में। और आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से आलोक लिखते हैं और मिनी लिखती हैं कि इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा हमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, और हेल्थ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपके पास कितना भी कुछ हो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए वो नीड्स पर फोकस करना ज़रूरी है। इच्छाएं पूरी करती रहेंगे तो इसका हेल्थ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि फिर वो टेंशन होती है ना कि अब हमारे पास पैसे नहीं है जेब में। ये वही हिसाब है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो फ़र्क होता है ना, क्रेडिट कार्ड में हम अक्सर वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी और कर्जा चढ़ जाता है और फिर हम स्ट्रेस में टेंशन में आ जाते हैं और हमारी हेल्थ ख़राब होती है। और डेबिट कार्ड मतलब कि जितना है उतना आप खर्च करें। हाँ, कभी बहुत ज़रूरी है और कोई बहुत ऐसी नीड है तो हम पूरी कर सकते हैं, मगर येस वी हैव टू मेनटेन अ बैलेंस। और नीड्स और वॉन्ट्स की हम बात कर रहे हैं और एक छोटी सी कहानी और सुनाऊँगी इस खूबसूरत से गाने के बाद।

ये जो लाइफ है ना, ये ऐसे ही हमें घुमाती है, मगर इसे हमें कंट्रोल करना है अपनी नीड्स और वांट्स में बैलेंस बनाकर। तो जो स्टोरी मैंने आपको पहले सुनाई थी, उसमें शीशे ने ये बात सीखी कि पैसे कमाने से पहले उसे समझदारी से खर्च करना भी हमें सीखना होता है, क्योंकि कमाई हमारी जेब भरती है, लेकिन सही फैसले आपकी ज़िंदगी को भरते हैं, खुशनुमा बनाते हैं और आप अननेसेसरी घूमने से बच जाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी, मगर उससे पहले आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं हमें। सुमन जुड़े हैं हमारे साथ फ्रॉम सोनितपुर आसाम से, लिखते हैं नाइस प्रोग्राम, उन्हें शो अच्छा लग रहा है और कहानी उन्हें अच्छी लगी जो पहले मैंने सुनाई थी और गीत भी खूबसूरत बज रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं कहाँ से, कृष्ण कुमार मिश्र जुड़े हैं, राधे राधे जी, सुप्रभात ज्योति जी नमस्कार, और मैं दिल्ली में रहता हूँ और आपको सुन के अच्छा लग रहा है। और लाइफ में अगर हम बैलेंस बना लेंगे ना अपनी नीड्स में और वांट्स में, तो ज़िंदगी भी हमें बहुत अच्छी लगेगी, है ना। बातें करने में कितनी अच्छी लगती है, मगर उसे अपनी ज़िंदगी में जब हमें आज़माना होता है ना, उसे उतारना होता है, तब हमें मुश्किल होती है। और इसीलिए, और बस इसीलिए हम ये बातें बार बार करते हैं, क्योंकि ना जाने कब हम क्या सुन रहे हैं, हमें कौन सुन रहा है और कौन कब किस सिचुएशन में है, और क्या पता कौन सी बात किसके जीवन में कब एक सोल्यूशन की तरह आ जाए। और हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल हल्का सा रुक कर, थोड़ा सा रुक कर सोचेंगे, बैठेंगे और तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। तो ये एक बेसिक बात है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं कि नीड्स एंड वांट्स में किस तरह से हम बैलेंस बना सकते हैं, और अगर हमारी इच्छाएं ज़्यादा हो गई तो हमें किस तरह की समस्याएँ आती हैं।

जिस समझदारी को हम अक्सर ढूंढते रहते हैं ना दूसरों में, वो हमारे अंदर होती है। बस उसे थोड़ा सा रुक कर सोच कर अपने अंदर से जवाब निकालने की बस देरी होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको एक मैं प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो एक सफल उद्योगपति से किसी ने पूछा कि आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप इतने सिंपल इतने साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? तो एक पुरानी कार चलाते हैं और बिना दिखावे के रहते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं भी आपको एक कहानी सुना रही हूँ और वो उद्योगपति भी कहानी सुना रहे हैं। तो जब मैं छोटा था तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय मुझे समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है। सालों बाद मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और अब मैं वो सब कुछ खरीद सकता हूँ जो मेरी दिल करता है, जिस पर मेरी इच्छा होती है, जिस पर उंगली रखूँ मैं ले सकता हूँ और जिसके बारे में मैं सिर्फ सपने देखता था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा कि क्या मुझे सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सफल हूँ, या फिर ये मेरी ऐसी इच्छाएं हैं जिन जो ना भी पूरी होंगी तब भी जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। तो बस उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करूँगा और अगर मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई नीड है तो उसकी पूरी करूँगा, लेकिन अपनी चाहतों का गुलाम नहीं बनूँगा। अक्सर हम जीवन में जब अपनी चाहतों के गुलाम बन जाते हैं तब हम मुश्किल में आ जाते हैं। तो बस वही नहीं करना है और ये कहानी सुनाने का पर्पस यही था कि हमें किसी ना किसी तरह से समझ आ जाए। बातें वही हैं, सीख वही है, बस शब्द बदल जाते हैं, कहानी कहने वाला बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, मगर उसका जो मर्म होता है ना वो हमें समझना है।

इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। इतना प्यारा सा मौसम है और चांद आ चुके हैं स्टूडियो में लेकर। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 7:02 से आपके साथ होंगी वो और आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देंगी। आज का दिन क्यों खास है वो सब बातें होंगी और उसके बाद 8 मैं आपसे फिर जुड़ूंगी लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सेकेंड आवर विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मगर हाँ थोड़ी सी डिफरेंट और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत से गाने भी। और याद रखिए कि जीवन जो हमारा है ना वो ज़रूरतें ज़रूरतों से चलता है, यानी कि ज़रूरतें जीवन को चलाती हैं, चाहते जीवन को सजाती हैं, लेकिन जब चाहते ज़रूरतों का रूप ले लेती हैं तब इंसान के पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं बचता है। तो बस यही वजह है कि सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा है, बल्कि वो है जिसे पता है कि उसके लिए कितना इनफ है, यानी कि पर्याप्त है। तो बस सुकून तो हमारे पास है ही, आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से आप और हम जुड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि क्या करना है लाइफ में। टेंशन जुड़ी है हमारे साथ सोनिया बिहार दिल्ली से और इन शो अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लगी, कहानी से जो सीख ली है ना हर कोई देखो अलग सीख लेगा, मगर आपने जो सीख ली है ना उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे फिर से 8:00।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को

वो इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को नए दिन की बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, एक ऐसा रेडियो मैगजीन जिसे पढ़ने के लिए आपको अपनी आंखों और अपने दिमाग को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना, अपना काम करते हुए बस सुनते जाना है, सुनते जाना और सुनते ही चले जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ हमेशा की तरह। तो आज गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का आगाज करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे जब आप अपने विचारों में शामिल कर लेंगे तो ये प्यारी सी जिंदगी आपको और प्यारी लगने लगेगी, क्योंकि बारिश भी हो चुकी है तो ये प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सुविचार कहता है कि भरोसा करते वक्त होशियार रहिए जनाब, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं।

यकीनन दोस्तों, आपकी आंखों में हम आंसू आने ही नहीं देंगे, तो चुराने की बात तो बड़ी दूर की है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आज किसी भी आपके साथ है चांद मुखर्जी। दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, व्हाट इज एनसीआर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। स्वतंत्रता मिलने के बाद दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लोगों के रहने, एजुकेशन, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, पानी और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ी, और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम बनाया गया, और 1986 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने काम शुरू किया। अब आपको बता देते हैं कि एनसीआर में कौन कौन से राज्य आते हैं, जिसमें पूरी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पश्चिम, पूर्व, मध्य के सभी जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहर जिनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर को भी शामिल किया गया है। हरियाणा के भी काफ़ी शहर एनसीआर में आते हैं, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, नूह, जिंद, भिवानी, करनाल, चरखी, दादरी, और वर्तमान में अधिसूचनाओं के अनुसार ये

नाम शामिल हैं और क्षेत्र हैं। राजस्थान के भी दो शहर एनसीआर में आते हैं जिनमें अलवर और भरतपुर शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, चांद है रेडियो के इस पार।

तो सुबह हो चुकी है, ये तो आपको भी पता है क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और इस प्रोग्राम में अब बात कर देते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। 1969 वो साल रहा जो मानव इतिहास का सबसे यादगार दिन बना। भारतीय समय अनुसार 21 जुलाई को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए थे। उनका प्रसिद्ध वाक्य था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी ये वो इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बड़ी लंबी सी छलांग है। इसके बाद की बात करें यानी इस दिन तो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा ही था यानी 21 जुलाई आज के दिन। और उसी के बाद 1977 में आज के दिन की बात करें तो 21 जुलाई 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। और 1983 में आज ही के दिन अंटार्कटिका के वोस्तोक स्टेशन पर पृथ्वी का अब तक का सबसे कम तापमान यानी 89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, कुदरत ने हम इंसानों को इतनी खूबियाँ दी हैं, इतनी खूबियाँ दी हैं कि अगर हम पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करें तो एक बेहतरीन, खुशनुमा और स्वस्थ जीवन जीने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता।

दोस्तों, अगर आपको भी कुछ हो गया है तो फिर उसके लिए आपको थोड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश हो गई है। इसलिए इस मौसम में खुद को बहुत ज़्यादा बचाने की, बहुत सेफ रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही हमारे जो शरीर होता है ना, उसको भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। कभी कभी कुछ आवश्यकताएँ आप उसकी कम करनी पड़ती हैं, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जन्मदिन की। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी का वो ख़ास दिन होता है उसका जन्मदिन, जिसे वो हर साल बड़ी ही खुशी से सेलिब्रेट करता है। तो अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है, तो आकाशवाणी की हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब आपको बता देते हैं कि आप किन शख्सियत के साथ अपनी सालगिरह शेयर कर रहे हैं। उनका नाम है चेतन चौहान जी, जो फेमस इंडियन क्रिकेटर और पॉलिटिशियन थे। यूपी के बरेली में 21 जुलाई को जन्मे चेतन चौहान जी इंडियन क्रिकेट टीम के शानदार ओपनिंग बैट्समैन थे। भारतीय क्रिकेट के संघर्ष और समर्पण के प्रतीक चेतन चौहान जी को उनकी जयंती के अवसर पर हम शत शत नमन करते हैं। मैच पर उनका जो साहस था और टीम के लिए उनकी जो योगदान है, उसको हम हमेशा हमेशा हमेशा याद करेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों हम तो आपको छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है, तो आने की तो बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों वो क्या है, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें उसके लिए जीवन में बहुत सारी मेहनत और निरंतर

निरंतर तपस्या करनी ही पड़ती है। तो आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उन्हें याद करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम है हिंदी फिल्म के संगीतकार सज्जाद हुसैन जी का, जो अपनी ही तरह की धुनों और संगीत के लिए और कठोर समर्पण के लिए जाने जाते थे। सज्जाद हुसैन जी 30 से ज़्यादा वाद्य यंत्र बजाने में वो निपुण थे। उनके पिता मोहम्मद आमिर खान जी कपड़े सिलने का काम करते थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश के

साथ ही अनेक सम्मान प्राप्त हुए थे। और आज ही के दिन दिवंगत हुए आत्माओं में गंगूबाई हंगल का नाम भी बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान गायिका पद्म विभूषण से सम्मानित गंगूबाई हंगल जी किराना घिराने की उनकी गायकी आज भी संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। 2009 में आज ही के दिन उन्होंने इस नश्वर संसार को विदा कहा था। और दोस्तों, ये लोग ही हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ न जाने देना ही मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है।

दोस्तों आजकल दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, ऐसे में अपने कदम नेक होना और रख पाना, उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ईश्वर को प्रार्थना को अपने दुआओं में शामिल करते हैं ना, अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें सच्ची राह दिखाना, सच्चे राह पर चलाना, तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर उससे हम सच्ची राह पर तो चलते ही हैं, साथ ही हमारी बातों से किसी का दिल भी नहीं दुखता, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई को हर साल नेशनल बी समवन डे मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था प्रोजेक्ट हार्मनी द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल शोषण और दुर्व्यवहार चाइल्ड अब्यूज को रोकना है। आज के दिन यानी 21 जुलाई को जिस दिन को हम जो चीज मनाते हैं वो हम बताते हैं, वो है नेशनल जंक फूड डे। इसको हम जंक फूड नेशनल जंक फूड डे के तौर पर भी मनाते हैं। जंक फूड उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है दोस्तों, आप जानते ही हैं, जिसमें कैलोरी होती है, ट्रांस फैट होता है, चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शरीर के लिए जो ज़रूरी पोषक चीज़ें होती हैं वो इसमें न के बराबर होती हैं। जंक फूड को अगर हम उसको नियमित सेवन करते हैं ना, तो हमें कई तरह की बीमारियाँ ही भी हो जाती है। सिर्फ मोटापा ही नहीं होता, बल्कि

दूसरी बीमारियों के साथ भी शरीर को कई परेशानियां शामिल हो जाती है, इसलिए जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज के दिन को जंक फूड के तौर पर इसलिए मनाया जाता है जिससे आज के दिन हम बिना किसी गिल्ट के जंक फूड खाएं। और रोज रोज अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं, तो अपनी स्वाद ग्रंथियों को आज कुछ नया देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आज आप आज के लिए सेलिब्रेट आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर शाम को तो हम चांदनी चौक जाएंगे। और आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, कोई खास जगह बताइएगा हमें।

0: दोस्तों, किसी को मिर्ची लग जाए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उसे पानी ऑफर कर सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे आपके लिए आपके पास आकाशवाणी रेनबो पर लेकर के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आपके साथ है चांद।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: और दोस्तों, अब कुछ और जरूरी बात आपको बता देते हैं। DU के स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग अब तक 10,248 अभ्यर्थियों का एडमिशन हो चुका है। PG में एडमिशन के लिए पहला स्पॉट राउंड 25 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें खाली सीटों पर नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन जो लेना चाहते हैं वो निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज और सत्यापन और फीस भुगतान और दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, जिससे उनको आगे कोई परेशानी ना हो। जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। पढ़ाई भी जरूरी है, वैसे पढ़ाई बहुत जरूरी है। नहीं, सबसे जरूरी है पढ़ाई।

भले वो एक एक्स्ट्रा पीरियड की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों अगर दुनिया में सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब कुछ होने में ऊपर वाले की मर्ज़ी शामिल हो तो चीज़ और भी बेहतर हो जाती है। इसलिए लगातार अपने काम में लगे रहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। फ़िलहाल तो घड़ी की मर्ज़ी है कि आपसे इजाज़त ले लें हम, लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के सेकेंड एपिसोड में यानी पार्ट टू में आपके साथ होंगी ज्योति आनंद और चांद की मुलाकात होगी आपसे यही आकाशवाणी रेनबो पर सिर्फ एक घंटे के बाद, पूरे घंटे के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमें लगातार।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोप्से में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गुरडाना सिलजानोवस्का दाकोवा के साथ वार्ता करेंगी। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जून तक 55 करोड़ 59 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत और 1 घायल। भारत ने

की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। बलूचिस्तान में मानव अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कल जम्मू इलाके में तेज बारिश के कारण एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। इससे पिछले दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। और अंत में पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

हाय रे हाय रे हाय रे, बचपन में ना ये मुझे सुनाई देता था, हाईवे हाईवे हाईवे। बचपन की तो बात ही अलग होती है। और ये मैंने आपको बात इसलिए बताई ताकि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। हे लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आकाशवाणी रेनबो के साथ आपका और हमारा सफ़र जुड़ चुका है। और वैसे भी एफएम रेनबो पर कोई भी दो अजनबी हों वो दोस्त बन ही जाते हैं, जैसे आप और हम हैं। चाहे हमने एक दूसरे को नहीं देखा है मगर आवाज़ के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कोई भी रूठा हुआ यहाँ रह ही नहीं सकता है। और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और बातें करेंगे मौसम के बारे में भी और आगे एक हफ्ते तक कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ यहां पर ज्योति। 8:10 इंजॉय करते हैं ये अगला खूबसूरत सा गाना। डांस करने का मन करे तो कर लीजिए।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति, और एक मैसेज बड़ा प्यारा सा आया है कि आप चाहें तो स्टूडियो में डांस कर लें। अगर स्टूडियो में नहीं कर सकती तो दिल तो हमारा हमेशा डांस करता ही रहता है क्योंकि यहां अगर आपसे मिलकर, आपसे बातें कर, आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देकर हमारा दिल हमेशा हैप्पी रहता है और हैप्पी दिल डांस करता है। आप कभी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है क्योंकि एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा, और पहले एक हफ्ते तक इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ी है और बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, और जिससे हम बहुत सब बहुत परेशान थे। और ह्यूमिडिटी लेवल्स तो बस पूछे ही मत, क्या ना पूछूं क्या ना बताऊं, ये सब जानते हैं और सब झेल रहे हैं। मगर यही तो लाइफ है, जैसा जो मिले उसको एक्सेप्ट करते जाओ, इन्जॉय करते जाओ, और कुछ भी बुरा लग रहा है तो उसको हम म्यूज़िक के साथ ना जेल करके उसको हम ईजी बना सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं, रोमांटिक बना सकते हैं। तो बस जैसे आपको मैंने बताया कि अब एक हफ्ते तक बारिश यूँ ही रहेगी, और वैसे तो आपको सब चीज़ें पता हैं कि बाहर निकलने से पहले क्या क्या करना है, मगर स्टिल अपने साथ रेनकोट और छाता ज़रूर रखें और बिल्कुल फिसल ना जाएं इधर उधर, क्योंकि बारिश होती है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तापमान जो है वो मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा, और न्यूनतम जा सकता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। मगर मौसम को देखकर, बाहर इस माहौल को देखकर और बारिश की बूंदों को पड़ते देखकर ना, तो दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है, लगता है कि मौसम अच्छा ही रहेगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही रहे मौसम, इसे हम इंजॉय करते हैं। हाँ, ह्यूमिडिटी भी फील होगी क्योंकि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है ह्यूमिडिटी फील होने लग जाती है, मगर हमें अपना ध्यान उस तरफ से हटाना है, कहीं और फोकस करना है। जैसे कि इस गाने पर आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, और बहुत खास इवेंट्स हैं आपके लिए और अपडेट्स हैं, और बहुत एक खास शख्सियत है जिन्होंने हमारे दिलों पर अपने गीतों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए बहुत ज़्यादा राज किया, और उन्हीं के उनसे जुड़े उनके परिवार के सदस्य से हम बात करेंगे।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और बारिश का मजा तो हम लेते ही हैं। आपको पता है कि बारिश का 25% हिस्सा धरती तक आ ही नहीं पाता है। हमें लगता है इतना पानी बरस गया, वाटर लॉगिंग

हो गई और जगह जगह पानी भर गया है, और मगर यस 25% हिस्सा धरती तक आ ही नहीं पाता है। जब बारिश होती है और तो ज़मीन तक तो काफ़ी पानी पहुंचता है, मगर एक ऐसी रिसर्च हुई है पहली बार जिससे पता चला है कि मानसून के दौरान जो बादलों से बरसने वाला पानी है उसका औसतन करीब 25% हिस्सा ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया को समझने से बारिश के पूर्व अनुमान और जल वायु मॉडल पहले से ज़्यादा सटीक बनाए जा सकते हैं। और पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारत में रिसर्च के जरिए ये पता लगाया है कि उत्तर पश्चिमी पश्चिमी घाट में मानसून के दौरान होने वाली बारिश का औसतन करीब 1/4 हिस्सा ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही भाप बनता है। और ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें लगता है कि जब बूंद हवा में मिलती है तो आसपास की हवा को ठंडा करती है और इससे नीचे की ओर ठंडी हवाएं बनती हैं और अगले बादलों और बारिश के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और यही वजह है कि इस प्रक्रिया को सही तरह से समझना मौसम विभाग के लिए और मानसून के पूर्व अनुमान के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। और तभी तो हमें पता लगता है कि बारिश कब होगी, कितने दिन होगी, कब नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमें तभी पता लगती हैं। इंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गाना आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं ज्योति आपके साथ 8:23।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर और समय हुआ है 8:30। और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं आनंद बख्शी साहब की और उनके बेटे हमारे साथ हैं जिनका नाम है राकेश आनंद बख्शी। तो सर आपका स्वागत है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग।
6: राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम एंड आकाशवाणी के सुनने वालों को, आनंद बख्शी जी की फैमिली और फैंस का नमस्कार।
5: जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जीवन में उनका कितना अहम रोल रहा है, आपको उनकी कौन सी बात ने इंस्पायर किया?
6: बहुत बातों ने इंस्पायर किया, मतलब ऐसी हजारों बातें हैं जो इंस्पायर करती है, लेकिन मुझे याद है एक बार बख्शी साहब, हम मेरे ख्याल में 1990s की बात है, मैंने काम शुरू किया था, नया नया काम करना शुरू किया था बिजनेस में सामने, तो बहुत रेयरली कभी गाड़ी ने हमको कहा कि सुनो बेटा मैंने कुछ लिखा है, सुनो क्या लिखा है। बहुत रेयरली, मेरे पूरी जिंदगी में कम से कम दो गाने ही होंगे जो हमने ऐसे सुने होंगे कि देखो सुनो मैंने क्या लिखा है आज। तो उन्होंने मुझे, मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई थी ऑलरेडी, तो हम खाली मैं और मेरे भाई घर पे थे, तो हम दोनों को हमको बिठाया और हमें बताया कि ये देखो मैंने एक गाना लिखा है और ये तुम्हारी जिंदगी में हर वक्त हर मौके पे हर स्टेज पे हर सिचुएशन पे हर सर्कमस्टेंसेस में काम आएगा।
5: ओके।
6: और वो गाने के बोल थे, मेरे ख्याल में कोई जैकी श्रॉफ की फिल्म

0: थी शायद,
1: हाँ
0: अंगारे ऐसा कुछ नाम था,
1: हाँ
0: और गाना था मुश्किल में है कौन किसी का,
1: हाँ
0: मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम खुद को आवाज दो। मतलब
1: एनीबडी
0: बी डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर हेल्प,
1: यस,
0: डिपेंड ओनली ऑन योर सेल्फ एंड यू विल नेवर लेट योर सेल्फ डाउन।
1: बट हम हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, बट यस, हमें किसी पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. तो राकेश
0: हाँ
1: आनंद बख्शी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और जो कि खुद आप एक राइटर हैं, ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं, और आप की बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनकी मैं अगर नाम लूँ तो नगमे, किस्से, बातें, यादें. तो आप खुद एक ऑथर हैं, आप ये सब चीज़ें आपने लिखी हैं. तो सर एक बात बताइए कि ऐसा कोई सीक्रेट है आनंद बख्शी साहब का जो अभी तक उनके फैंस को नहीं पता है? आप उनके बेटे हैं तो शायद कोई ऐसा सीक्रेट आप बता सकें, उनके जीवन की कोई खास बात.
0: ऐसे कुछ सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम था उनका जबरदस्त। जैसे कि उन्होंने जब जब वो बम्बई पहली बार आए थे, तो उन्होंने एक एक कविता लिखी थी, एक एक प्रेयर लिखी थी, प्रेयर कृष्ण जी को। वो कृष्ण जी को कृष्ण जी नहीं कहते थे, वो बंसी वाले कहते थे उनको, कि मेरे बंसी वाले हैं।
1: जी
0: तो उन्होंने बंसी अपने बंसी वाले को एक प्रार्थना लिखी थी, और वो प्रार्थना जो थी, वो प्रार्थना लिखी थी, प्रेयर उन्होंने लिखा है ऊपर प्रेयर, लेकिन वो एकदम दादागिरी से लिखी थी,
1: अच्छा.
0: मतलब एकदम गुंडागर्दी से लिखी थी। उन्होंने उसमें क्या लिखा था, जो हमने उनकी जीवनी में छपा छापा है, दैट प्रेयर इज पब्लिश इन द नगमे किस्से बातें यादें, उनकी जीवनी है, उसमें हमने छापी है उस प्रेयर को। उन्होंने लिखा है कि मेरे बंसी वाले, ये जो लिखने का शौक है, गाने का शौक है, कंपोज करने का शौक है, एक्टिंग का शौक है मुझे, थिएटर की एक्टिंग करने का, सिनेमा में एक्टिंग करने का, गाने लिखने का, नज्मे लिखने का, जो मेरा शौक है, ये तूने मेरी आंखों में बसाए हैं। ये जो सपने हैं, ये तूने मेरी आंखों में बसाए हैं बंसी वाले, अब तू इनको पूरा करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पूरा कीजिए, आप प्लीज कीजिए, आप करेंगे तो मैं तीर्थ यात्रा पर चले जाऊंगा, या मैं डोनेशन करूंगा, या मैं किसी की सेवा करूंगा। उन्होंने बल्कि डिमांड किया है किशन जी से, बंसी वाले से, कि ये यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये
1: यस,
0: आपकी जिम्मेवारी बनती है अभी, कि ये जो सपने आपने मेरे मेरे दिल में, मेरे
1: डाले हैं.
0: दिमाग में बचपन से डाले हैं ना, आप तू ही पूरा कर इनको, और तू ही इनको पूरा करेगा। तो ये कितनी अलग फिलॉसफी है, क्योंकि हम देखो ना, हम भी मंदिर जाते हैं, हम जहां जाते हैं, हम मांगते हैं अपने भगवान से, अपने देवा से, अपने अपने देवियों से, यू नो, कि हम ये चाहते हैं, या ये पूरा करके दो, और आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा दान करेंगे, अब तो मैं 10 चक्कर मारूंगा मंदिर के, या जो भी है। और वो भी ठीक है हर हम, क्योंकि सनातन धर्म की ये ब्यूटी है कि हर बिलीफ सिस्टम इज ओके, सब अलाउड है।
1: जी
0: कोई दिया जलाता है तो कोई अगरबत्ती जलाता है, और दोनों ओके हैं, बराबर है। कोई दिया बग, और कोई दिया बत्ती और अगरबत्ती भी नहीं जलाता, वो भी ओके हमारे लिए, हमारे
1: बिल्कुल
0: धर्म में। तो मुझे ये कमाल की बात लगी कि यार देखो कितना कॉन्फिडेंस और कितना प्यार। और उन्होंने कृष्ण जी को भगवान माना, लेकिन अपने अपने ऊपर नहीं मांगा माना, उन्होंने अपने दोस्त, जैसे दोस्त से कैसे बात करता है इंसान, या अपने अपने डैडी कैसे, हम गए अपने डैडी से कैसे बात करते हैं, दादागिरी से बात करते हैं, डैडी हमको ये चाहिए आज,
1: जी
0: हाँ डैडी हमको यहाँ लेके चलो घूमने के लिए, मम्मी हमको ये ला के दो, हमको ये खाने में, हमें आज ये आज खिचड़ी पका के दो, या आज हलवा बना के दो। हम डिमांड करते हैं ना, हम उनको अपने ऊंचा, हमसे ऊंचा नहीं समझते उस हिसाब से। तो
1: बिल्कुल
0: वैसे ही उन्होंने किशन जी को एकदम अपने लेवल का सोच के मांगा, डिमांड किया
1: जी.
0: कि मेरे सपने मेरी आंखों में तुमने बसाए हैं, अब तुम इसे पूरा करो।
1: तभी जीवन में इतनी
0: तो ये
1: कामयाबी उनको हासिल हुई है, और उन्होंने कितने सारे अनगिनत गानों में उन्होंने अपनी जो है वो अपने लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं.
0: कामयाबी कामयाबी की एक और उनकी रीजन ये थी कि टीम वर्क। उनको कभी भी किसी ने भी जिंदगी भर शुरू से कभी भी कॉम्प्लीमेंट किया ना, कि बख्शी आप क्या गाना लिखा है आपने। और उनकी जब जिंदगी के लास्ट फ्यू इयर्स रह गए थे, तब तक तो उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था, तो लोगों ने उनको लेजेंड कहना शुरू किया, अरे आप तो लेजेंड हैं, आप तो लेजेंड हैं, आप तो जादूगर हैं। तो वो हमेशा हमेशा हमेशा एक ही बात कहते थे, भैया ये मैंने सिर्फ इसके लफ्ज लिखे हैं, आप जो गाना पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ उसमें मेरा हाथ नहीं है, उसमें मेरे बंसी वाले का भी हाथ है, उसमें म्यूजिक कंपोजर का भी हाथ है, उसमें सिंगर का भी हाथ है, उसमें एक डायरेक्टर, फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका भी हाथ है और जो फिल्म का राइटर है उसका भी हाथ है, क्योंकि डायरेक्टर और राइटर ने मिलके मुझे इंस्पायर किया अच्छी कहानियों से, अच्छे रिलेशनशिप से। अगर उन्होंने गाना लिखा फूलों का तारों का सबका कहना

0: एक हजारों में मेरी बहना है, या उन्होंने गाना लिखा माँ तू कितनी प्यारी कितनी अच्छी भोली है माँ, यू नो, तो वो क्योंकि वो कैरेक्टर इतने पावरफुल, इतने डीप, इतने फिलोसफिकल, इतनी इमोशनल कैरेक्टर्स थे, कहानियां थी, उन कहानियों ने उस लिरिसिस्ट को इंस्पायर किया ना ये गाना लिखने के लिए। आप तो आप कैसे कह सकते हो कि ये गाना मेरा है, ये गाना सबका है,
1: सबका है।
0: तो वो हमेशा शुरू से ही सबको एक मानते थे।

0: आशीर्वाद। और ये जो टीम वर्क, वो सोचते थे कि ये टीम वर्क है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। इसने उनको ब्रह्म लोक में रखा 40 ईयर्स, कम से कम 35 ईयर्स वो ब्रह्म लोक में रहे जीते जीते।
1: इसीलिए उनको चार बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए उनके पूरे करियर के दौरान। और जैसे आपने इतनी बात करी कि वो सबको इसका भागीदार मानते थे कि कोई एक इंसान इसका सक्सेस का रीजन नहीं हो सकता है, तो आपके हिसाब से सर बेस्ट कॉम्बिनेशन या उनका टीम वर्क बेस्ट किसके साथ था आपके हिसाब से?
0: तो ये जो तो ये सवाल जब उनसे किया गया था बहुत बहुत 20-40 साल पहले, मेरे ख्याल में उनके गुजर जाने से कोई 2-3 साल पहले, लेट 1990, तो जो पूछने वाला था उसने एक्सपेक्ट किया कि बख्शी साहब बोलेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन था या आर डी बर्मन के साथ मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन था। लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वो चौंक गया वो जर्नलिस्ट। उन्होंने जवाब दिया मेरा सबसे अच्छा जो मेरी भागीदारी रही किसी की अगर मेरी जिंदगी में इसकी वजह से मैंने इतना सक्सेस पाया है, यू नो इट वॉज नॉट आर डी बर्मन और एलपी, इट वॉज माई वाइफ कमला बख्शी, मेरी धर्म पत्नी। सबसे मुझे जो पार्टनरशिप मेरे हमेशा काम आई है, जो मुझे आज जिंदगी में इतना दूर ले आई है, इतना बड़ा कामयाबी लिरिसिस्ट मुझे बनाया है, वो म्यूजिक कंपोजर का तो जो कंट्रीब्यूशन था वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भागीदारी मेरी बीवी की थी। क्योंकि शुरू से उन्होंने मुझे कहा था कि भाई तुम, आपको लिखने का शौक है ना, आप जाओ लिखो अपने गाने बनाओ, फैमिली मुझे छोड़ दो, फैमिली मेरे पे छोड़ दो, बच्चों को और फैमिली को मैं बड़ा करूंगी, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो उनको ये कहना था कि अगर मेरी धर्म पत्नी का साथ ना होता तो मैं कैसे इतने गाने लिख पाता, मैं कैसे इतना कॉन्सेंट्रेशन कर पाता अपने काम पे। क्योंकि उसने अपना जो शौक था, सिलाई करने का शौक था, उनको सिलाई का शौक था, और उनकी मेरी मम्मी की ग्रेजुएशन की डिग्री है सिलाई में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्स किया हुआ उन्होंने।
1: तो जी राकेश जी,
0: सब छोड़ के अपना शौक खुद छोड़ के अपनी सिलाई का जो उनका टैलेंट था वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको लिखने का शौक है ना,
1: तो मेरा उनका पूरा साथ दिया, उनकी उनकी लाइफ पार्टनर ने उनके करियर में भी पूरा साथ दिया। और ये बहुत जरूरी होता है शायद कि अगर हमारे साथ,
0: क्योंकि उन्होंने पूरा साथ फैमिली एज अ फैमिली दिया, वो करियर में कॉन्सेंट्रेट कर सके ना।
1: बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही।
0: उनको तो पता नहीं था कि हम कौन से, कभी कभी डैडी पूछ रहे तो कौन से क्लास में चला गया, अच्छा तू फोर्थ में गया अभी, अच्छा अच्छा। मम्मी को पता रहता था, मम्मी को पता था अभी फोर्थ से फिफ्थ जा रहा है, सेवन से एट में जा रहा है, डैडी को पूछना पड़ता था। तो इसलिए देखो ना, उन्होंने उनको भागीदारी
1: का बिल्कुल। तो राकेश जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि लाइफ पार्टनर आपका साथ दे तो आप करियर में ऊंचाइयां छू सकते हैं। और आनंद बख्शी साहब ने कितने सारे गाने हमें दिए हैं अपनी कलम से। वैसे तो उनके बहुत सारे गाने हैं सर, चिट्ठी ना कोई संदेश, दिल तो पागल है, ऊर्जा गाले कावा, मतलब इतनी सारी लिस्ट है कि मैं सोच में पड़ जा रही हूँ कि कौन सा गाना प्ले करूँ। तो आपका कोई फेवरेट है बता सकते हैं उनका?
0: आपका जो फेवरेट हो आप बजाइए।
1: चलिए ठीक है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और उनको हम याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, क्योंकि उनकी कलम ने हमें कुछ ऐसे नगमे दिए हैं जो आज तक हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो दिल तो पागल है का ही टाइटल ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ लता जी की आवाज़।
0: या तो मैं चाहूंगा कि उनकी जो जीवनी है, नगमे किससे बातें यादें, उससे जो मैंने जो टाइटल उसका जो जीवनी का टाइटल रखा था वो बख्शी साहब और सुभाष जी का जो गाना है, नगमे हैं, किससे हैं, बातें हैं, यादें, वो बजा दीजिए
1: यादें मूवी से।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है, तो
0: हम हो तो
1: हाँ मैं कोशिश करती हूँ सर उसको प्ले करने की। फिलहाल आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
0: धन्यवाद आपके लिसनर्स का, सुनने वालों का, कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया दोनों को।
1: थैंक यू सो मच सर, चलिए
0: विदा।
1: तो लिसनर्स, ये थे हमारे साथ राकेश आनंद बख्शी, जो बेटे हैं आनंद बख्शी जी के, जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत से गाने दिए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रही कि कौन सा गाना प्ले करूं आपके लिए, तो जैसा सर ने जो बताया, अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूं। अदरवाइज़ एक और गाना है मेरे पास, क्यों किया हुआ है, इन्जॉय कीजिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो के साथ आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ज्योति आपके साथ है और 8:53 हो चुके हैं और 9:02 से आपके साथ होंगी चांद लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। फिलहाल इन गानों को एंजॉय कीजिए। और एक और बहुत खास खबर है आपके लिए, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। जी हाँ, 31 जुलाई कर दी है। और इससे गौतम बुद्ध नगर समेत जो प्रदेश भर के खिलाड़ी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको आवेदन का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल गया है। तो खेल के साथ साथ पढ़ाई कितनी अच्छी बात है ना। तो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई।

फिलहाल चांद आ चुकी हैं स्टूडियो में. जैसे मैंने बताया, दिल के तराने, गाने नए पुराने आप उनके साथ एंजॉय करेंगे. और चलते चलते आपको एक और बढ़िया सी खबर बता देती हूँ कि दिल्ली मेट्रो के 16 नए कॉरिडोर्स पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4, 5A और 5B से नरेला, नजफगढ़, रोहिणी, तुगलकाबाद, मजलिस पार्क, मौजपुर, शास्त्री नगर, मयूर विहार, केंद्रीय सचिवालय जैसे इलाकों को और ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं ना, उनके दिल में मेट्रो बसती है और मेट्रो पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, है ना. तो बस इसका जितना विस्तार होगा उतना अच्छा है, मगर कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए. जैसे कि जब मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं तो पहले अंदर जो लोग हैं उन्हें बाहर आने दीजिए, तभी आप अंदर जा पाएंगे. इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा और मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर. तब तक बाय बाय, टेक केयर.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोब्जे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सेल्जानोवस का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जून तक 55,49,00,000 से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314,00,000 करोड़ रुपए रहा। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी

सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कल जम्मू इलाके में तेज बारिश के कारण एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: दिल के तराने गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो पर आज की सुबह लाए हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल, आपका दिल, आपका दिल, आपका दिन, सब कुछ बहुत बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चांद है आपके साथ, जुलाई है, बेहतरीन गानों का बाग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो।

ऐसा ही कुछ क्रेज होता है पुराने गानों का, जो पुराने होकर भी पुराने नहीं होते और हम सब के दिल में आज तक उसी तरीके से जिंदा है। जैसे कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार लगता है कि वाओ। तो आज आनंद बख्शी साहब की जयंती है, तो हमने सोचा क्यों ना तीनों गाने उन्हीं की फिल्म से लिए जाए, तो एक तरह से उनका सेलिब्रेशन बर्थडे और उनको याद करने का एक मौका भी हमें मिलेगा। तो फिल्म कटी पतंग का ये गाना हम सुनेंगे जो आई थी 1971 में, और इसको लिखा था जी हमारे आनंद बख्शी साहब ने, और इसके संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, और इसको गाया था किशोर कुमार साहब ने। फिल्म थी कटी पतंग और पर्दे पर नजर आए थे राजेश खन्ना साहब और आशा पारेख जी।

0: दोस्तों, जमाना चाहे कितना ही नया हो, जमाना चाहे कितना ही पुराना रहे, लेकिन प्यार तो हमेशा से दीवाना रहा है। और इसी दीवानगी के तहत ही तो हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आप जुड़े रहिएगा दिल के तराने, गाने नए पुराने के साथ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और दोस्तों, आज जो 3 गाने पुराने हम सेलेक्ट करके लाए हैं वो आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए हैं। तो उनमें अगला गाना है वो बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म बॉबी का, मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, और इस में संगीतकार रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसको गाया शैलेंद्र सिंह ने, और पर्दे पर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जी नज़र आए थे। और इस गाने में और इस फिल्म में जितने भी लोग थे वो तो इतने मशहूर हुए दोस्तों कि आज तक जब भी हम सुनते हैं ना इस गाने को, ऐसा लगता है कि जैसे बस बिल्कुल ताजा। और बख्शी साहब के कलम ने इसको और भी कमाल कर दिया।

और दोस्तों, किसी की कलम से निकले हुए अल्फाज ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे ही दिल के जज्बात हो, है ना। तभी तो वो लोग हो जाते हैं हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में जज्बा। आप सुन रहे प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और दोस्तों, आज का जो तीसरा पुराना गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो भी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है और ये बहुत ही प्यारा सा गाना है, सिचुएशन को बिल्कुल सूट करता हुआ गाना है। फिल्म का नाम है मिलन और आई थी ये 1967 में। इसको गाया था मुकेश जी ने और लता मंगेशकर जी ने और इसको लिखा था आनंद बख्शी जी ने। तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं इस महीने के साथ इस प्यारे से गाने। और पर्दे पर नजर आए थे सुनील दत्त जी और नूतन जी।

मौसम पुरवैया भी चल रही है और बारिश की हल्की हल्की फुहारें भी पड़ रही हैं, कभी जोर से भी पड़ रही है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपना सामान जो भी जरूरी है उसको साथ में प्लास्टिक में रख के लेके चलिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, और आपके जो मैसेजेस हैं वो हमें बता रहे थे कि आपका साथ लगातार हमारे साथ बना हुआ था। आपसे फिर मुलाकात होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तो अब हम जाएं उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपके साथ कौन रहेंगे। आपके साथ रहेंगे अगले प्रोग्राम में उत्कर्ष। तो अब हम चलते हैं, बाय बाय।

आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, विद द पिटर पैटर ऑफ ड्रिजलिंग शावर्स, वी वेलकम यू टू 102.6 आकाशवाणी रेनबोज मैचलेस म्यूजिक आवर विथ उत्कर्ष शारण। वी ब्रिंग यू इनक्रेडिबल म्यूजिक टू स्टार्ट योर डे विथ इन इंग्लिश।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: We now bring you the latest advisory from the Delhi Traffic Police. Owing to the ongoing monsoon session of the Parliament, special traffic arrangements will be in place in the entire New Delhi Range jurisdiction, putting restrictions to heavy vehicular movement and traffic in general. So take heed. Coming up, Daddy Frank, The Guitar Man by Merle Haggard.
4: Let me tell you about a song.

0: For once, beauty being in the eye of the beholder is not merely a reference to the subjective. One look up into the sky reveals the gorgeous slate-gray field of monsoon clouds. So, peer out of the nearest window as we take a very short break.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
0: For those just tuning in, this is 102.6 Akashwani Rainbow's Matchless Music Hour, with incredible music in English and Hindi. So ease up on the stresses of the morning commute as we play Peaceful Easy Feeling by the Eagles.

0: know something else that is sudden and strong sometimes? The urge to just stand up and stretch. It's good for the muscles, so make sure you take breaks so they don't go stiff. And while you're at it, allow us too to take this last short break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक को संबोधित किया। संसद में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने के बारे में जानकारी मांगी है। नई दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। सरकार ने बताया है कि इस वर्ष जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। 2025-2026 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के जम्मू में कल तेज बारिश के कारण एक

महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर अब बबीता त्रिपाठी की वाणी आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, आपके लिए एक सवाल और भी बहुत कुछ, ढेर सारा एंटरटेनमेंट, टोटल धमाल इस शो में होने वाला है। हमारे साथ, हमारे यानी आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर बबीता त्रिपाठी के साथ। और कुल मिलाकर बात ये कि शो शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी, तो आप सबको कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही सुनते रहना है, एंजॉय करते रहना है, अपने लाइफ को मस्त बनाना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है, यानी बॉलीवुड चिल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो आप सब एकदम कमाल धमाल और बवाल मचाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स होंगी, साथ में आपके लिए एक सवाल भी होगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। आपको बस कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और आपको जवाब मिल जाएगा और सवाल पूछा जाएगा लगभग 11:30 बजे, तो आधी बातों को भी आप सुनेंगे तो चलेगा। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना है एकदम फ्री, और क्या पता बॉलीवुड सरताज बन जाए आप, और बॉलीवुड सरताज बनेंगे तो हमसे बात करने का मौका मिलेगा, स्वयं हम आपको कॉल लगाएंगे और बात करेंगे। तो एक काम करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इंजॉय करते रहिए, साथ में व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं

फिलहाल तो अजय देवगन ने क्या जबरदस्त कमाल धमाल कर रखा है। अजय देवगन क्या इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और धमाल मचा रही है। बात कर रही हूँ धमाल फोर की। अब दूसरा वीकेंड भी हो चुका है और उसमें क्या कलेक्शन किया है जानना नहीं चाहेंगे, हम भी बताने के लिए ही बैठे हुए जी। तो चलिए देखते हैं दूसरे वीकेंड पर कुछ खास हो पाया नहीं हो पाया। वैसे तो ऑलरेडी अच्छा कमाल कर रही है शो, बढ़िया ही चल रहे हैं इसके, लेकिन हाँ जब दूसरा सप्ताह शुरू होता है तब देखने वाली बात होती है और खास तौर पर मंडे को देखने वाली बात होती है, क्योंकि छुट्टियों के दिन में लोग कई बार टाइम पास करने के लिए भी मूवी देखने चले जाते हैं। तो आखिर मंडे टेस्ट में ये मूवी पास हुई या नहीं देखते हैं। वैसे तो अच्छा ही चल रही है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक 2.69 करोड़ का लगभग कलेक्शन इस मूवी ने दूसरे सोमवार को किया। और रही बात टोटल कलेक्शन की तो 127.19 करोड़ हो चुके हैं इंद्र कुमार की द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में। अजय देवगन, अरशद वारसी और भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं और इन सब का जो जलवा है वो बरकरार है इस वक्त। और रही बात दसवें दिन की यानी मंडे की, तो जैसा मैंने बताया 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया। अब आगे क्या रहेगा इस मूवी का हाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब भी बता दें कि टोटल सॉरी ये धमाल फोर का जो मुकाबला है ना वो हॉलीवुड फिल्म दी ओडिसी से है। उसकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है और कल इसने 21.90 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल कलेक्शन 67.95 करोड़ है, जो कि बेहतरीन कहीं कहा जा सकता है। दूसरे देश में आकर इतना जबरदस्त प्रदर्शन कम ही फिल्मों का होता है। अल्फा और वेलकम टू द जंगल की बात करें तो अभी ये दोनों की दोनों मूवीज बहुत खास कमाल नहीं कर रही हैं, एवरेज थोड़ा थोड़ा चल रही है।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है, बॉलीवुड की खबरें चल रही हैं और अभी तो जनादेश की बात करते हैं, किसी पॉलिटिकल ड्रामा की बात कर रही हूँ भाई, कोई जनादेश नहीं, मैं कोई चुनाव में नहीं खड़े होने वाली। मैं आपको बता दूं कि जनादेश प्रकाश झा की एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है जो आने वाली है और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तुषार कपूर। और वो जब 25 साल करियर के अपने इस इंडस्ट्री में पूरे कर चुके हैं तो काफ़ी उत्साहित हैं और साथ में इस मूवी को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये उनकी पहली पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। और हमारे पास भी तो हम कह सकते हैं कि तुषार कपूर को ऐसी मूवी में, सीरियस टाइप की मूवी में देखना भी हमारे लिए अलग ही अनुभव होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो उनको गोलमाल धमाल जैसी जो कॉमेडी मूवीज़ हैं उनमें देखते हुए आए हैं और ऐसी उनकी कुछ पहचान या छाप हमारे मस्तिष्क पर पहले ही पड़ चुकी है। अब हम जब उनको इस तरह की मूवीज़ में देखेंगे जहां पर पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया जाएगा, जैसे प्रकाश झा की मूवीज़ जिस तरह से जानी जाती हैं, उनकी ज़बरदस्त मूवीज़ हैं, राजनीति है, आरक्षण है, सत्याग्रह है और इस तरह की जो मूवीज़ हैं, और आश्रम जैसी सुपर हिट वेब सीरीज़ भी वो बना चुके हैं, तो ऐसे में तुषार कपूर इस रोल में या इस तरह की मूवी में किस तरह का रोल निभाएंगे और किस तरह दिखाई देंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात होगी। हम तो उनको गोलमाल जैसी मूवीज़ में देखते हैं और ऐसे ही एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो वैसे ऐसी मूवीज में भी वो आना जारी रखेंगे। आपको तो पता है ना, गोलमाल 5 में भी तुषार कपूर साइन किए जा चुके हैं और उसको उसकी शूटिंग भी मार्च में शुरू हो चुकी है, इसी मार्च में। अब आगे कब आएगी बताएंगे, जब भी आएगी उसके बारे में नई अपडेट। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि सारी की सारी स्टारकास्ट गोलमाल 5 में भी नजर आने वाली है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, श्रेयस कुमार, केमू और शर्मन जोशी जैसे बड़े बड़े सितारे चमकेंगे इस मूवी में। फिलहाल तो जनादेश

मार्च में शुरू हो चुकी है, इसी मार्च में। अब आगे कब आएगी बताएंगे, जब भी आएगी उसके बारे में नई अपडेट। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि सारी की सारी स्टारकास्ट गोलमाल 5 में भी नजर आने वाली है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, श्रेयस कुमार खेमू और शर्मन जोशी जैसे बड़े बड़े सितारे चमकेंगे इस मूवी में। फिलहाल तो जनादेश की बारी, देखते हैं जनादेश में आखिर तुषार कपूर क्या करने वाले हैं। मेरे लिए भी एक्साइटमेंट ज्यादा ही है।

मूवी आई थी ना, तो कुछ इसी तरह का इम्प्रेशन पड़ा था। और उसके बाद दबंग की जो सीरीज आई, उसने इस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई इस तरह की मूवीज में अगर कोई फिट बैठता है ना, तो वो है हमारे सल्लू मियाँ। फिलहाल आपको बता दूं कि सलमान खान की जो मूवी है मातृभूमि, उसकी क्या अपडेट है, उसका नया पोस्टर जारी हो गया है। कब रिलीज होगी ये लगभग तय है, डेट नहीं तय है, लेकिन हाँ ये तय हो गया है कि इसी साल ये मूवी रिलीज हो जाएगी। और जो पोस्टर है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है, और हाँ इस पर लिखा गया है, एक सैनिक का वादा, एक परिवार की ताकत, एक राष्ट्र का गौरव। और इस पोस्टर के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है, अगले साल का वेट बिल्कुल नहीं करने वाली है। और इस मूवी की बात करें तो बैटल ऑफ गलवान ऐसा रखा गया था शुरुआत में इसका नाम, लेकिन अब इसे मातृभूमि कर दिया गया है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में ऐतिहासिक झड़प हुई थी, उस पर ये मूवी बनी हुई है। इसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। और रही बात सलमान खान के रोल की, तो मातृभूमि में सलमान खान मुख्य भूमिका में है, और 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। और हाँ, पांडे जी का एक गाना सुना लेते हैं, मतलब ये जो गाना है दबंग का, उसको सुनते हैं और लौट कर आते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप सबसे एक सवाल पूछने का लगभग समय आने वाला है, तो ध्यान से सुनिए और फिलहाल पांडे जी को सुनिए। सुनते रहिए बीटी विद बीटी।

वैसे ऐसी भूमिकाएं, चल हट जा रे न पंगाले। तो जब ऐसी भूमिकाओं में किसी मेल कैरेक्टर को आप देखते हैं तो किसको देखते हैं बॉलीवुड में? हो जाएगा नहीं तो दंगा रे। सोचिए सोचिए सोचिए, कौन है ऐसा जो इस तरह के कैरेक्टर्स में फिट बैठता है? हमारे सल्लू मियां से बढ़कर कौन दबंग भाई हो सकता है? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग जब

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो, और वो टाइम आ गया है जब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा और उस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और अगर बॉलीवुड सरताज आप बने तो कॉल मिलाएंगे हम आपको, रैंडमली कोई नंबर चूज करेंगे, आपको कॉल मिलाएंगे, आपसे बातें करेंगे और सही जवाब आपसे डायरेक्टली ऑन एयर जानेंगे। रही बात आपके नाम की, तो आप सबका काम व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने मैसेज किया है तो आप सबके मैसेजेस पढ़े जाएंगे, आप सबके नाम लिए जाएंगे, आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप मैसेज करना है, जो बिल्कुल फ्री है। और सवाल तो एकदम ही आसान है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। जैसे कि आप आकाशवाणी रेनबो सुनते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आज का सवाल क्या है। तो आज की क्विज है कि अपकमिंग जनादेश जो मूवी है प्रकाश झा की, उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आपकी बारी। व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर, जिसका नंबर का नाम है 9868107070 9868107070। और हाँ, मेरा नाम बबिता त्रिपाठी, शो का नाम बॉलीवुड ट्रेल्स, टोटल मिला के बीटी विद बीटी। एंजॉय कर रहे हैं आप, करते रहिए।

कल यानी 20 तारीख को रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और निर्देशक एटली की बात करें तो क्या जबरदस्त तारीफ की है भाई। वैसे तो लगभग सभी ने तारीफ की है इसके एकदम भव्य ट्रेलर की, लेकिन एटली जब कुछ कहते हैं तो भाई निर्देशक हैं, ऐसे में उनकी बात अलग ही मायने रखती है। उन्होंने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्साइटमेंट है इस मूवी का वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जवान जैसी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और वो मुरीद हो गए हैं इस ट्रेलर को देखकर। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि नमित मल्होत्रा निर्देशक जो निर्माता हैं और निर्देशक नितेश तिवारी हैं और फिल्म की स्टार कास्ट है सब ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजन, विजुअल्स और कलाकारों के अभिनय की ज़बरदस्त तारीफ है क्योंकि वो भव्य है, जादुई है, उनका जो अनुभव है वो देख कर ऐसा ही है। हर एक पर्सन की उन्होंने अलग अलग तारीफ की है, पूरा फ्रेम उन्होंने भव्य, नया और जादुई महसूस होता है ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी तय है रामायण की। और एक फिल्म और है जिसके ट्रेलर का हम सबको इंतज़ार है और उसकी रिलीज यानी ट्रेलर की रिलीज डेट कह सकते हैं या फिर उसका जो लॉन्च है वो भी काफी भव्य होने वाला है। वो कौन सी फिल्म है जानेंगे तो बताएंगे थोड़ी देर में। आपको जानना ही होगा क्योंकि उस मूवी की भी काफी चर्चा है। थोड़ी देर में लौट कर आती हूँ।

गया है उसका ट्रेलर, और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है, और इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश, और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च होगा और वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है। बेंगलुरु के एक ग्रैंड इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। और टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, इसके लिए हम सब की जो जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी जो अपडेट्स हैं वो और ज़्यादा आ रही हैं। फिलहाल देखेंगे ट्रेलर देखकर हम सब की क्या राय बनती है। वैसे एक बात तो फिक्स है कि जब यश होते हैं किसी मूवी में तो वो मूवी काफ़ी यशस्वी बन जाती है ना। तो फिलहाल देखते हैं इस मूवी का क्या हाल होता है।

आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेडियो दिल से दिल तक। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लौट कराती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ जिन्होंने जवाब दिए हैं सही या गलत, डजंट मैटर। फिलहाल आपको बता दूं, मैंने पूछा था कि अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में कौन है, आपको बस यही बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

आ रही हैं आप सबके नामों की जिन्होंने जवाब दिया है आज के क्विज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम्प दिल्ली से लिख रहे हैं और इनका ही मैसेज सबसे पहले दिखा, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको हम शुरू से लेते हैं ताकि कोई नाम मिस ना हो। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज भी दिखा है, लेकिन हाँ सबसे पहले अपना नाम लिखने को कहा था। कई बार मिस हो जाता है आपका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा, फिर आंसर लंबा लिख दिया। आंसर लिखना है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, बस इतनी सी बात, और आंसर भेज देना है, दैट्स इट। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, इरशाद अशरफी शहर का नाम है इनके, और इरशाद का नाम इरशाद है या अशरफी है या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद इन्होंने राजस्थान से मैसेज किया है। और हैरी सिंधु बटिंडा से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, उसके बाद सुखलाला बाला का है वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे कोमल और पूजा का दिल्ली से सही जवाब के साथ। ये सब सही जवाब के साथ आंसर्स आए हैं, इम्तियाज़ सही जवाब के साथ मैसेजेस आए हैं, और इम्तियाज़ जवाहर कैम्प कीर्ति नगर से लिख रहे हैं, और निकिता कहाँ से लिख रहे हैं, पुणे से लिख रही हैं, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से, और विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, संजय खत्री कोल्हापुर से, और तुषा ये नेक्स्ट मैसेज अपना नाम सबसे पहले लिखते तो अच्छा लगता ना, ढूंढना पड़ रहा है मुझे, निधि प्रयागराज से, और रणवीर मोनिश ये कहीं से लिख रहे हैं अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, मीना चौधरी शास्त्री नगर मेरठ से, दानिश कतौली से, और तवसीफ अहमद का मैसेज श्रीनगर से आया है, और मिसेस धर्म भाटिया जी का मैसेज रोहतक से आया है, राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ललित का मैसेज आया है पंजाब से, राजीव कुमार का मेरठ से, और टुडेज क्वेश्चन क्वेश्चन इज आंसर इज, भाई क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था, चलिए ठीक है अपना नाम भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, नाम नहीं लिखा हुआ है। सीमा मेरठ से लिख रही हैं और ये भाई थैंक यू सो मच, तारीफ में आपका नाम गुम हो गया। औरंगाबाद बिहार से महेंद्र प्रताप सिंह का मैसेज, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, अजय कुमार का छत्तीसगढ़ से, और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अपना नाम सबसे पहले आपने भी नहीं लिखा है उमेश, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने लिखा है ख्याला से, और आप में से कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज, ढूंढ कर लाती हूँ।

0: तो चलिए, इस वक्त हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर आज का बॉलीवुड सरताज कौन है, और बॉलीवुड सरताज हमारे बीच ही हैं। वो अपना नाम स्वयं बताएंगी और कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं, सब कुछ जानने के लिए अगर आप हैं बेताब तो लीजिए, हाजिर हैं आज की बॉलीवुड सरताज। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम, मैं मीना चौधरी फ्रॉम मेरठ से बात कर रही हूँ।
0: मेरठ से मीना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद
0: मीना, क्या करती हैं आप?
1: मैम, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हूँ।
0: वाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हैं और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो सुन रही हैं, कैसे? सब कुछ शांति है?
1: जी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी चला के जा रहे थे और इस समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
0: हमें कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, घर पे हैं, कहीं से भी आप हमें सुन सकते हैं और हर वर्ग के लोग सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मीना, पहले तो आपको बॉलीवुड सरताज बनने की ढेर सारी बधाई करते हैं, क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। एक बार ऑन एयर भी आप बता दीजिए, मैंने पूछा था अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं?
1: अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में तुषार कपूर है।
0: तुषार कपूर, ग्रेट। इसी के साथ आप बनती है बॉलीवुड सरताज, क्लैपिंग आपके लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू,
0: कांग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है मीना जी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है मैम। सबसे पहले मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा।
0: सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बस यही सुनना था मुझे। तो मीना जी, आप दिल्ली पुलिस में हैं, आम नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी?
1: आम नागरिकों को मैम, बस मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अभी फिलहाल ड्राइव करते समय आपसे बात कर रही हूँ, बस कोई भी गाड़ी चलाते समय फोन पे बातचीत ना करें, रेडियो जरूर सुन सकते हैं।
0: हाँ, रेडियो सुन सकते हैं, बट गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है, और थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से दिल तक आप जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, ठीक है मीना जी?
1: नमस्कार,
0: ओके, बाय।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू।
0: तो ये थी मीना आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक जुड़े रहिए। फिलहाल एक बजे आपके लिए क्या खास होने वाला है अगले प्रोग्राम में बताती हुई जाऊंगी। इस गाने को तो सुन लीजिए।

फिलहाल तो समय यही कह रहा है कि बॉलीवुड ट्रेल से लेना होगा। बबीता त्रिपाठी का विदा यानी बीटी विद बीटी का फिलहाल यहाँ पर समाप्त किया जाता है। एक गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन हाँ लौट कर आऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस एक घंटे बाद लेकर आऊंगी हमारे एक्सपर्ट को रेनबो हेल्पलाइन में। और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और ऐसे में अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है हेयर फॉल को रोकना, जो हम सब के साथ कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और भी बहुत सारी हेयर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप उन सब का निवारण चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहना है। यहाँ हर टॉपिक पर बातचीत होती है और आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, स्किन एंड हेयर केयर इन मॉनसून। और एक्सपर्ट इज नन अदर दैन डॉक्टर भारती तनेजा, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी 1 बजे। तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा, लेकर आऊंगी भारती तनेजा को और आप सबके सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए दीजिए विदा, लौट कर आती हूँ और उससे पहले एंजॉय कीजिए वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले 8 गोल उत्कर्ष के साथ। बाय बाय।

0: pleasure to have you on the show. Do you have also other creative pastimes, or perhaps a small art project that you're especially proud of? Let us know at 9868107070 on WhatsApp as we take this hour's last break.
1: Let's join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन के जीएमसी बाल योगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने के बारे में जानकारी मांगी है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडो

0: सिर्फ आपको पता है, और हो सकता है आपकी जो गड़बड़ है वो किसी और से भी रिलेट कर जाए तो उनको भी फायदा हो जाए। कह क्यों रही हूँ, इसलिए कि आप कॉल लगाइए और पूछ डालिए। हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो बिल्कुल तैयार है, इस मौसम में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे तो आप ही बताएंगी बहुत अच्छे से, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आते होंगे इस तरह
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो इस मौसम में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल है, आप फोन उठाइए और नंबर घुमाइए, नंबर मैं बताती हूँ, जिससे आप डायरेक्टली डॉक्टर भारती से बात करेंगे और अपने सवाल पूछ डालेंगे। 2342-1080 ये एक नंबर है, एक नंबर और है 2342-1084 जिस पर आपको कॉल लगाना है और हमसे डायरेक्टली बात करनी है डॉक्टर भारती तनेजा जी से। आप सवाल पूछिए और जवाब अपना ले लीजिए, और साथ में आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और भेज देना है अपने सवाल के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: जो मिट्टी है वो जम जाती है, उससे ब्लैकेट्स बन जाते हैं, फिर वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं। तो एक्ने की समस्या जो है सबसे ज़्यादा इन दिनों में होती है। और बाल तो बालों के क्यूटिकल्स खुल जाते हैं और आपका वो एकदम जो बाल हैं वो रफ हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, और बारिश की वजह से जब भीग जाते हैं बाल तो और ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इवन फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, पैरों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, तो एक एक करके सबको लेते रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। और आपने कहा जिस तरह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, किसी भी पार्ट में आ सकती हैं, स्किन के किसी भी जगह पे, बॉडी के किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाथ पैर पर खास तौर पर

0: कभी भी आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपने जरा सा स्क्रब किया, जितनी भी मिट्टी विट्टी है, जितना भी धूल है, वो सब निकल जाएगी, है ना, आपकी स्किन साफ हो जाएगी, ब्लैकहेड निकालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़नी, और ब्लैकहेड नहीं होंगे तो एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: सारे पार्लर्स बंद होने वाले हैं क्योंकि आप रेगुलरली बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को सजेशंस देके
0: जाते लोग सुनते कहाँ हैं, सुनते हैं पर फॉलो नहीं करते,
1: फॉलो नहीं करते कुछ दिन तक।
0: लोगों को लगता है कौन इतनी मेहनत करेगा, बाजार से एक स्क्रब उठा लो, या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं
1: ज्यादा फैंसी लगता है लोगों,
0: कुछ लोगों को लगता है कि ये भगवान कौन रोज करेगा काम, तो काम ही नहीं, वो इतना एक देखिए कुछ सेकंड्स।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है शो, जिसमें कि आज बात कर रहे हैं मॉनसून सीजन में स्किन और हेयर की किस तरह से केयर करनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर भारती तनेजा हैं, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है तो कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपने सवाल लिखकर। आपको कॉल करने के लिए नंबर चाहिए होगा तो बता देती हूँ, 2342-1080 या 2342-1084, जिस पर आपको कॉल करके सवाल डायरेक्टली करना है, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और वो ज़रूर शामिल होगा। 9868107070 ये नंबर है व्हाट्सएप मैसेज के लिए, 9868107070। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। एक सवाल लेते हैं मैम अनीता का, जो दिल्ली से आया है। शी इज़ 46 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने लिखा है कि इज़ इट ओके टू अप्लाई द फॉलोइंग टू पैक्स मिक्सड विद मिल्क और On alternate days, one मुल्तानी मिट्टी, two हल्दी उपटन, please advise।
1: दोनों को मिक्स करने की बात कर रहे
0: हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि ये पैक लेती हैं alternate days पे, मिक्स

0: करके मिल्क के साथ।
1: ये दोनों पैक अलग अलग ले रही हैं।
0: हाँ
1: एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी और दूसरी चीज़ क्या है,
0: हल्दी उपटन।
1: हल्दी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, हल्दी उपटन भी बहुत अच्छा है, दोनों को मिक्स करना चाहिए, कर सकते हैं, बल्कि बेटर है कि मिक्स करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अकेली जो है कोई उन्होंने पैक में आई डोंट नो क्या क्या डाला होगा, ये मार्केट से बना हुआ पैक खरीद रही हैं, और हल्दी उपटन भी डेफिनेटली ये मार्केट से खरीद रही हैं, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। दोनों चीज़ें मिक्स होना बेटर है,
0: बेटर है,
1: बेटर है।
0: ओके।

0: जा रहा है और कुछ एटमोसफेयर में फर्क आता जा रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम में कई हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आजकल बहुत जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर हम केमिकल्स लगाते हैं तो बाल सफ़ेद होते हैं। कुछ बाहर की पोल्यूशन जो है इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन में इतने तरह के कहना चाहिए एलिमेंट्स मिले हुए हैं जो कि आपके बालों को सफ़ेद कर रहे हैं। तो बालों के सफ़ेद होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने बात करनी हो तो फिर आपको बहुत सारा चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है कि बाल क्यों जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। तो उनको फिर जब सफ़ेद हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा हीना लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके बालों को फ़ायदा हो सकता है।
1: इसी बीच एक सवाल आया है, उनको लेते हैं। हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
2: जी, मैं दिल्ली से लुबना बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए
2: जी। मेरा सवाल है, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
2: जी, मेरा सवाल ये है कि माय एज इज 34 और मेरे चेहरे पे ओपन पोर्स दिखाई देते हैं अब, तो वो थोड़ा सा यू नो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए एक होम रेमेडी। और मेरा एक और सवाल है रिलेटेड टू माय हेयर।
0: पहले एक एक करके ले आपका जो सबसे पहला है ओपन पोर्स के लिए, तो घर में आपके पता है आपके किचन में बहुत ही बढ़िया चीज़ पड़ी हुई है, यू नो वो है टोमेटो। तो आप टोमेटो को बीच में से आधा कर लीजिए और

0: कम होते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात रहती है। लेकिन अगर आपके बाल क्या है, बालों को खींच के बंद करते हैं क्या? आप चोटी बना दी हैं या खींच के बंद करते हैं?
1: नहीं, मैं बन बांधती हूँ
0: हाँ, एक ही बात
1: ज्यादा।
0: है, वो आप खींचते हैं बालों को। बालों को खींचना बंद कीजिए, अगले बालों को स्पेशली थोड़ा सा सॉफ्ट रहने दीजिए। चाहे कटवा के आप उसको आगे से छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए बालों को। जैसे हम खींचते हैं तो बाल आगे से, आजकल इतने अच्छे हेयर टॉनिक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं, वो भी डालते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे ले रहे हैं ना थायराइड के लिए, उनको बोलिए। हमारे पास ना होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो हम खाएं और लगाएं, दोनों करने से हमारे बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक वापस भी आ जाते हैं। अभी तो आपके बहुत ज़्यादा दूर गए नहीं है ना, अभी अभी तो आपकी उम्र ही कम है, तो आपके बाल अभी अभी अभी फॉलिकल्स होंगे, तो उनको आप ज़रूर फॉलिकल्स को दोबारा से ला सकती हैं अगर आप मसाज करें और साथ में आप अपना मेडिसिन खाएं और लगाएं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो किसी पार्लर में जाके ओजोन ट्रीटमेंट एक मिलता है, तो ओजोन से या लेज़र से अपने, क्या है, ओजोन या लेज़र से जो आपके बाल चले गए ना, फॉलिकल्स चले गए हैं, वो वापस आ जाते हैं। अगर अभी थोड़ी देर हुए, जैसे 25 साल तो नहीं हुए ना गए हुए, कुछ ही साल हुए या 2-4 साल ही होंगे, तो आ सकते हैं। और एक
1: उसकी कोई साइड इफेक्ट्स
0: नहीं,
1: नहीं,
0: नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
1: ओके।
0: और एक बात और बहुत
1: क्योंकि हम लोग
0: इम्पोर्टेंट
1: ना कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले सवाल
0: जी
1: यही रहता
0: जी
1: है कि कहीं कुछ
0: सच
1: साइड इफेक्ट ना हो
0: सच
1: जाए।
0: बात है। और एक ना आजकल कॉपर पेप्टाइड वाले हेयर टॉनिक मिलते हैं जिनमें कॉपर
1: हेलो,
0: पेप्टाइड रहता है, तो कॉपर पेप्टाइड जो है
1: जी
0: आपके
1: बोलिए।
0: जो
1: हाँ
0: फॉलिकल्स हैं
1: जी,
0: उनको भी वापस लेके आता है, और जो आपके और अभी बाल हैं उनको भी मोटा कर देते हैं। तो आपके जो बाल हैं वो मोटे हो जाएंगे तो खूबसूरत लगने लग जाएंगे और ज़्यादा लगने लग जाएंगे।
1: एक और सवाल इस बीच आया है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं बात कर रहा हूँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्कार।
2: मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे चेचक के दाग हो जाते हैं चेहरे पे, ये किसी सर्जरी वगैरह से ठीक हो सकते हैं?
0: फिर से बोले, क्या है आपके चेहरे पे?
1: चेचक के दाग सर,
0: चेचक के
1: क्या
0: दाग?
1: सर्जरी से ठीक हो सकते हैं?
0: अरे, चेचक के दाग के लिए सर्जरी तो बहुत ही मुश्किल काम है, पूरी स्किन ही आपकी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत वाली बात है और लंबा काम है। आजकल अगर आपने चेचक के दाग आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से ही हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स कर देते हैं। कुछ मशीन्स हैं हमारे पास, लेज़र है, कुछ तरह के मास्क होते हैं, कुछ तरह की पील्स होती हैं। पूरा बताना तो इस वक्त मुश्किल है,
1: हाँ।
0: लेकिन बहुत सारी पील्स हैं, बहुत सारे मास्क हैं और बहुत सारी मशीन्स हैं जिनका हम, इसका कार्बन फेशियल होता है, कार्बन की मशीन होती है, उससे आपके जो स्किन है उसको काफ़ी हद तक रिजुविनेट भी किया जा सकता है और ऊपर से पील भी किया जा सकता है। तो
1: चलिए,
0: उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाइए। अगर आप सर्जरी की सोचेंगे ना, तो पूरी स्किन आपको कहीं और से, आपकी बॉडी से

छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा, लग रहा है बातें करते जाएं, लेकिन गाने भी बहुत ज़रूरी हैं और ये मैम की पसंद का एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आपके सवालों के साथ।

0: स्किन केयर पर बात कर रहे हैं, हेयर केयर पर बात कर रहे हैं, तो सवाल तो बहुत सारे आने ही हैं इस सीजन में, प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाती हैं। डॉक्टर भारती तरेजा जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हमारे बीच हैं। आप सबके मैसेजेस मैं शामिल करती हूँ जो लगातार आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि सारे मैसेजेस शामिल होने चाहिए। अभी मुक्ता का मैसेज मुझे दिख रहा है, बोटॉक्स केराटिन विच इज़ गुड, आई हैव कर्ली एंड फ्रीजी हेयर्स, क्या करें?
1: ये ना एक्चुअली क्या है, बोटॉक्स एंड केराटिन दोनों अलग अलग बातें हैं। केराटिन अगर इनके फ्रिजी बाल हैं तो उसके लिए अगर इनको स्ट्रेट करना है तो थोड़ा सा बोटॉक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर केराटिन अगर उनके बालों में रफनेस है और बाल मतलब उनके बालों में जान नहीं है तो केराटिन करवाएं। केराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, बोटॉक्स से बाल सॉफ्ट बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन केराटिन से शाइन को ज़्यादा ये नहीं मिलेगा, लेकिन उनको खाना मिलेगा। बाल बने केराटिन के, तो जब हमारा केराटिन कम हो जाता है तो उसके अंदर केराटिन को हम फिल करना चाहते हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो अच्छा। अंदर जाके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बालों को बेटर करता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको क्या चाहिए, दोनों ही अच्छी हैं, केराटिन भी करा सकते हैं, बोटॉक्स भी करा सकते हैं। बालों को खाना अच्छे से भरपूर देना है तो केराटिन करा लें, और शाइन देना है तो बोटॉक्स करा लें।
0: ओके, बॉडी में इचिंग होती है बहुत, उसका क्या करना है? प्रमिला कर्नाटका से बोल रही हैं। वैसे इचिंग की हम बात कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं ये बात करते हैं।
1: इचिंग होती

0: ये तो इनको एक्चुअली स्पेशली मॉनसून सीजन में अगर 2 बार नहा लें, पूरी बॉडी
1: अच्छा
0: की बात है तो एक तो 2 बार नहाएं तो उसको अपने आप को ज़्यादा फ्रेश रखें। और फिर जो जो इनके पार्ट्स हैं ना, जो अंदर जैसे अंडर आर्म्स है ना, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा के रखें, तो उससे इचिंग कम होगी। वो उन्हीं पार्ट्स में ज़्यादा होती है जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीने से बचना ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने नहाने के पानी में संतरे के छिलके, आजकल संतरा तो खैर कम मिल रहा है, गुलाब के फूल ले सकती हैं,
1: अच्छा
0: जैस्मिन के फ्लावर्स ले सकती हैं, जो भी फूल मिल जाते हैं इनके गार्डन में, जो फूल लगे हैं उनको भी ले सकती हैं, तो उनको डाल के रखें रात को, सुबह उस पानी से नहा लें। आजकल तो गर्म पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस
1: ओके
0: पानी से नहा सकती हैं, उससे भी इचिंग कम होगी, और पाउडर लगा के रखें तो इचिंग कम होगी।
1: नमस्कार मैम, हाउ टू मेक द थंब राइट लेफ्ट लेग स्किन सॉफ्ट फ्रॉम डाउन, इट हैज़ क्रैक्स ड्यू टू ड्राइनेस, प्लीज सजेस्ट सम होम रेमेडी। खुशबू रोहिणी राय
0: समझ
1: है,
0: नहीं
1: ये
0: आई
1: शुक्रिया
0: है।
1: से मुझे लग रहा है ये इन्होंने ये पूछना चाहा है कि थंब के नीचे की स्किन जो है उनकी, उसको सॉफ्ट करना है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। कई बार थंब
0: हाँ
1: में
0: पैर,
1: ऐसा होता
0: हाँ
1: है
0: पैरों में
1: स्किन।
0: कभी कभी कभी कभी देखिए सर्दियों में लोगों में क्रैक आते हैं, कभी कभी गर्मियों में भी क्रैक आ जाते हैं, और उसकी वजह भी ये है कि जो सफाई नहीं रखते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के क्रैक्स आते हैं। तो अगर क्रैक्स इनके आ रहे हैं, पहली बार तो पेडिक्योर कराएं, खुद भी घर में पेडिक्योर कर सकती हैं, थोड़ा सा पानी में नमक और कोई भी सोप डाल के थोड़ी देर के लिए पैरों को भिगो के रखें, और जब सॉफ्ट हो जाए तो इनको, क्योंकि क्रैक्स है तो बहुत सॉफ्टली उनको स्क्रब करना है। और फिर घरेलू इलाज बताती हूँ बहुत ही अच्छा इनके लिए, जिनके क्रैक्स हैं, घर में मोमबत्तियाँ तो पड़ी होती हैं, टूटी फूटी मोमबत्तियाँ जो है उनको भी संभाल के रखना चाहिए इसी काम के लिए। तो टूटी फूटी मोमबत्ती या कोई भी मोमबत्ती ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल, एक कटोरी में मोमबत्ती के छोटे छोटे पीसेस डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, हल्का गर्म कीजिए, जैसे ही गर्म करेंगे तो वो तेल में जो वैक्स है वो पिघल जाएगी। उन दोनों को अच्छे से चम्मच से मिक्स करें, और अपने हल्का गर्म होने पे, बहुत गर्म नहीं लेकिन गर्म को ही अपने क्रैक्स में डाल लीजिए, और ये रात को वॉश करने के बाद करें, और फिर पैरों को अगर हो सके तो कोई सॉक्स पहन के सो जाएं, बस कुछ ही दिन करेंगे तो इनके ठीक हो जाएंगे।
1: वाह, तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज हैं इसी से इंस्पायर हो रहे हैं लोग और हर चीज की रेमेडी पूछ रहे हैं। देखिए
0: अच्छी बात है।
1: अभी पूछा, मेरा सवाल है कि 4 साल का मेरा बेटा है, उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, टैनिंग
0: गॉड
1: के लिए कोई रेमेडी बता दीजिए।
0: बेचारा
1: नाम नहीं
0: जो
1: लिखा लेकिन ये सभी बच्चों के जो खेलने जाते हैं बाहर के लिए
0: हाँ
1: होता है सबके साथ।
0: वैसे मैं पता क्या, मैं अपनी बेटी के साथ मैंने हमेशा किया है इसलिए मैं कह सकती हूँ। हम इसमें आप थोड़ा सा घरेलू एक उपटन बना लें, प्यारा सा, बिल्कुल सॉफ्ट सा, और उसी से मसाज करके नहला दें बच्चे को, तो आप रंग जो है ना काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है।
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
0: इसके लिए घर में जितनी भी आपके पास दालें हैं उन सारी दालों को पीस लीजिए, हम 4-5 दालें जितनी भी यूज़ करें, उड़द की, मूंग की, अरहर की, और फिर उतने ही चावल ले लीजिए, तो सारी चीज़ों को इक्वली लेके इनको पीस डालिए, और जितना आपका मिक्सचर बना है उतना ही आपने चंदन पाउडर डालना है, और उतना ही उसमें मुल्तानी मिट्टी डालनी है। तो तीनों
1: हर
0: चीज़
1: स्किन के लिए
0: हर स्किन के लिए, अभी
1: ठीक
0: मैं
1: है।
0: बाद में बताऊंगी ऑयली और ड्राई के लिए, तो पहले पाउडर बन रहा है,
1: हाँ हाँ
0: उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से गुलाब के फूल डाल लीजिए, तो ये आपका स्क्रब बन गया। आप चाहें तो इसमें बच्चों के लिए ना बारीक पीसिएगा, बहुत दरदरा नहीं होना चाहिए, और पीस नहीं तो बच्चों के लिए आप सिर्फ, सबसे अच्छा यही है जैसे मैंने पहले बताया कि चंदन पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, केलन पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर सिर्फ खसखस डाल लीजिए,
1: अच्छा
0: या फिर पीली सरसों डाल लीजिए,
1: कितना
0: थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे कि वो
1: पीस
0: दर्द,
1: कर या ऐसे
0: पीसना नहीं, ऐसे
1: ऐसे।
0: खसखस बहुत पतली होती है और
1: हाँ
0: चुभती नहीं है, गोल है ना, किसी भी बच्चे को चुभेगी नहीं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए,
1: ओ
0: हाँ हल्दी डाल लीजिए, मलाई डाल लीजिए, और चंदन तो है ही है इसके अंदर, और अगर बहुत मतलब मलाई अच्छा, बच्चों के लिए मलाई अच्छी है, और थोड़ा चाहे तो ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं या शहद डाल लीजिए, और दूध डाल के इसका अच्छे से एक स्क्रब बना लीजिए, रोज़ इससे नहलाना शुरू कीजिए, हल्दी भी गोरा करेगी। आप गोरा करने के लिए एक है केसर, तो दूध में थोड़ी देर केसर डाल के रख दीजिए तो केसरी दूध बन जाएगा,
1: हाँ
0: उससे इसका स्क्रब बना लें।
1: ओके
0: ये अगर मैं खसखस से या पीली सरसों से कभी भी उनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. तो स्क्रब है पर स्क्रब जैसा नहीं है. सो दैट विल डेफिनेटली वर्क. और मैं पक्का कह सकती हूँ कि सिर रंग गोरा जरूर होता है.

0: मैंने अपनी बेटी का किया इसलिए मैं जानती हूँ।
1: अच्छा, ये सभी बच्चों की समस्या खास तौर पर होती है कि जो उनका नेचुरल कलर है ना वो चला जाता है क्योंकि वो धूप में खेल रहे होते हैं।
0: जी जी जी,
1: कई बार वो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती
0: हाँ,
1: है।
0: ये कैलामाइन से केयोलिन से
1: मैम पूरी बॉडी पे लगाया जा सकता है?
0: पूरी बॉडी को मसाज कीजिए, थोड़ा पूरी बॉडी खुद बनाएंगे ना तो लगा भी नहीं पड़ेगा
1: थोड़ी देर।
0: नहीं नहीं, मसाज कर लीजिए बस, मसाज करते करते 2-3 मिनट रख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धो दीजिए पर अच्छे से मसाज कर दीजिए।
1: कोई ऑयल नहीं डालना इसमें?
0: मलाई डाली,
1: मलाई डाली हाँ।
0: okay. मलाई नहीं डाल रहे तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, आलमंड ऑयल डाल लीजिए,
1: वाइटमिन
0: ई ऑयल डाल लीजिए तो पूरी बॉडी को नरिशमेंट भी मिलती है, उस कुछ भी डाल सकते हैं इसमें।
1: एक सवाल निधि का आया है प्रयागराज से, इन्होंने कहा कि क्या रेमेडीज है वाइट हेड्स के लिए?
0: वाइट हेड्स को एक्चुअली वो अंदर आपका जो है ना ऑयल तो निकला है लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, अगर तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं तो आप कोई पिन लेके किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, किसी बाले में पिन लेके थोड़ा सा निकाल देते हैं वाइट हेड्स को। अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास होती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम देते हैं खाने को तो अंदर से ही ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वाइट हेड्स होने बंद हो जाते हैं।
1: ओके
0: जी,
1: पैंथर तोमर, अब हमने जो बातें की ना वो सारी हमने स्किन पर क्या लगाए की बात करी लेकिन हम क्या खाए पर बात करते
0: बहुत
1: हैं जिससे स्किन अपने आप ही ग्लो करे या फिर बाल अपने आप ही अच्छे रहें।
0: ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को लोग से हम लोग सोचते हैं फेशियल कराएंगे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, पर फेशियल ज़रूर फ़ायदा देता है, आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, आपकी स्किन को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो जो आप खा रहे हैं वो लगेगा, लेकिन खा कह रहे हैं यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते, अगर हमारी स्किन अब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, हम मेडिसिन खा रहे हैं उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। और खाने में क्या खाएं, पानी ज़रूर पीना है अच्छे से ताकि आपके जो आप खाएं वो आपकी पूरी बॉडी में पहुँच पाए और आपके जितने टॉक्सिन्स हैं बाहर निकल पाएँ, तो दिन में 12-15 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। खाने में फल फ्रूट खाएँ और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएँ, प्रोटीन से आपके बाल, आपके नेल्स, आपके वैसे भी आपकी पूरी बॉडी जो बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है।
1: okay.
0: तो कैल्शियम ज़रूरी है आपके बाल और उसको नेल्स को बनाने के लिए भी, तो खाने को अच्छा संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। आजकल कलरफुल वेजिटेबल्स इतनी मिल जाती हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स अपने खाने में ऐड कीजिए। कलरफुल वेजिटेबल्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को, आपके बालों को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं, तो वो भी खाएं। प्रोटीन का अमाउंट ज़रूर है, दूध बच्चे पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पनीर बना के खिला दीजिए। पनीर आजकल इतने ज़्यादा रेसिपीज हैं, सिर्फ पनीर से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है पता है, चॉकलेट डाल के बच्चों को इतनी पसंद आती है, जिसमें खजूर डालिए, चॉकलेट डालिए, पनीर डाली, उसी से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है जिसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं और बड़ों को भी जिनको शुगर है उनको भी नुकसान नहीं होता। तो खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, संतुलित आहार लेना ज़रूरी है, वाइटमिन सी, वाइटमिन ई, वाइटमिन ये सारे वाइटमिन्स भी होने चाहिए। पूरी फूड की अगर हम बनाए तो रेसिपीज अलग अलग बनाए जा सकते हैं। आप स्प्राउटेड दाल खाइए, इसमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है, जो मैं तो वेजिटेरियंस की बात ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे वही याद रहता है। आप चिकन खाइए, फिश खाइए जो बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन स्प्राउटेड दाल खाइए। और स्प्राउटेड दाल के एक बहुत अच्छा एक छोटी सी रेसिपी क्विकली बनाती हूँ, स्प्राउटेड दाल को हल्का सा आप चाहें तो स्टीम कर सकती हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो उसको वैसे भी खा सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डालिए, नींबू डालिए, देखिए सारे विटामिन आते जा रहे हैं, पनीर डालिए, नींबू डालिए, टमाटर डालिए, थोड़ा सा प्याज डालिए और उसको चाट मसाला डालिए के इतनी स्वाद आपकी चाट बन जाती है, बच्चों को भी पसंद है बड़ों को भी पसंद है।
1: बिल्कुल, एक सवाल जो लगभग सभी 40+ जो जो लेडीज हैं उनके लिए या फिर जेंट्स के लिए भी ये होता है कि उनके थोड़े दिन बाद ना बाल उड़ने लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। और 47 साल की उम्र है जो ये सवाल आया, उन्होंने लिखा है, इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, इन्होंने लिखा है कि पीछे से उनके बाल हल्के हो गए हैं और रूखे और बेजान लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं?
0: उड़ गए हैं तो वैसे मैं बता रही थी, अभी मैंने बताया भी था कि कोई हेयर टॉनिक मार्केट से ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं जिसमें कॉपर पेप्टाइड हो, तो पक्की बात है कि बाल वापस आ ही जाएंगे। लेकिन घर में भी अगर चाहें तो मेथी ले सकते हैं, मेथी को तेल में डालिए, मेथी, आंवला, शिकाकाई, इन सबको तेल में डालिए, उस तेल को बॉयल कर लीजिए या पानी में डाल के उसको बॉयल कर लीजिए, जब 1/4 रह जाए तो उसके अंदर, इसके अंदर आजकल रोजमेरी के लीव्स बड़े आसानी से बाजार से मिल रहे हैं, तो रोजमेरी की लीव्स डाल सकते हैं। घर में रोज आप खाना सब्जी बनाते हैं ना, उसके उससे छिलके, प्याज के छिलकों को रख लीजिए, वो भी उसमें डाल दीजिए और प्याज डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है।

0: नहीं तो फिर कलौंजी डाल दीजिए, वो भी
1: है।
0: प्याज का ही है पार्ट। तो इसका कलौंजी का तेल डाला लगाया जाता है, अगर तेल लगाना चाहते हैं, और कलौंजी को पानी में डाल, जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई सारी चीज़ों में कलौंजी भी डाल दीजिए,
1: ओके
0: प्याज डाल दीजिए, प्याज के छिलके डाल दीजिए, इनको बॉयल कीजिए। तो बॉयल करने के बाद जब 1/3 1/4 रह जाए पानी, वो आपका एक हेयर टॉनिक बन गया है। तो
1: ओके
0: उस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, मसाज कीजिए, डेफिनेटली बाल आ जाएंगे। अभी अभी अभी गिरे हैं तो पक्का आ जाएंगे।
1: और कंचन सोनिया बिहार से सेम समस्या लिख रहे हैं, 32 ईयर्स की एज है, बहुत ज़्यादा इनके बाल झड़ते हैं, कुछ इलाज बता दीजिए।
0: कभी बताया मैंने?
1: तो जो आपने बताया ये काम कर जाएगा। वैसे सवाल इतने सारे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे और ले लेते हैं आपका लेकिन क्या करें, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन चलते चलते एक दो सवाल तो आपसे ले ही लेती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि इस सीज़न में क्या होता है, ऑलरेडी स्किन पर मॉइस्चर होता है, तेल जैसा लगता रहता है, तो क्रीम लगाएं या नहीं लगाएं?
0: मॉइस्चराइजर,
1: लगाए
0: मॉइस्चराइजर में पानी ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है, तो मॉइस्चराइजर लगाइए। तो मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। ह्यूमिड है, ह्यूमिड कितना भी हो मौसम, लेकिन मॉइस्चराइजर की फिर भी ज़रूरत होती है। पानी और तेल दोनों का बैलेंस ज़रूरी है।
1: और पिगमेंटेशन
0: हाँ
1: इसकी समस्या बढ़ जाती है?
0: हाँ पिगमेंटेशन है तो आपको मैं बताती हूँ, एलोवेरा का आप जेल लगाइए, उसके अंदर मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट मिलता है,
1: अच्छा,
0: मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट डालिए, दोनों को मिक्स कीजिए, लगाइए, पिगमेंटेशन कम हो जाएगी।
1: एक्सट्रैक्ट अलग से मिलता है?
0: हाँ हाँ हाँ बाजार से मिल
1: ओके
0: जाता है, लेकिन
1: मुलेठी
0: पिगमेंटेशन
1: पाउडर भी डाल सकते हैं क्या?
0: पाउडर भी डाल सकते हैं,
1: ओके
0: लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगी, पिगमेंटेशन जो है बहुत बड़ी समस्या है, उसके उसके अंदर तक जाके वजह जानना जरूरी है, वजह को हटाना जरूरी है।
1: एक बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल, चावल का पानी। लोग चावल के बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए वो
0: हाँ
1: बता
0: ये
1: देंगे।
0: कोरियंस ने सिखा दिया, हम यूज कर रहे हैं पहले से
1: तो
0: चावल,
1: क्या हम
0: हमारे
1: कोरियंस
0: हर
1: बन जाएंगे?
0: हाँ हमारे हर स्क्रब में चावल का आटा रहता है। हाँ
1: हाँ,
0: तो हम तो पहले ही चावल इस्तेमाल कर
1: पहले
0: रहे थे,
1: इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये
0: लेकिन
1: चावल का
0: वो
1: पानी कितना कारगर है?
0: चावल का पानी जो है आप स्प्रे की तरह अपने बालों में लगाएं, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, फेस पे लगाएं फेस भी अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा कारगर है। आप रोज चावल की मांड जो है ना फेंकते हैं ना, उसको मत फेंकिए, उसको चावल खाइए, उसकी मांड जो फेंक रहे हैं उसको फेस पे लगाइए, बालों में लगाइए, फेस भी अच्छा और बाल भी अच्छे।
1: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने का वक्त तो आ गया है, लेकिन एक स्किन केयर जाते जाते पूछ लेती हूँ, रात में सोने से पहले क्या करें हम?
0: सोने से पहले फेस को वॉश करें, और एज के हिसाब से आप ऑयल लगाएं या कोई कोलाजन लगाएं या एचए क्रीम लगाएं, वो ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूरी जाने से पहले फटाफट बताना चाहूँगी, लोगों को लगता है कि आजकल सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, बादल इतने तो सन तो है ही नहीं, उनको दिख नहीं रहा, लेकिन सन की रेज हैं, तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा के ही निकलें।
1: ओके ग्रेट मैम, ऐसा लग रहा है पूछती जाऊं लेकिन क्या करूं टाइम है जिसकी फाउंडेशन हम मैटर करती है, क्योंकि अभी प्रियंका आ गई है अगला शो
0: हाँ
1: आशियाना लेकर, तो वो शुरू करेंगी अपना शो। उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आई स्टूडियो में, इतना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हम सबके लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो ये थी डॉक्टर भारती तनेजा, ब्यूटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी आज बात की स्किन एंड हेयर केयर इन मानसून पर। आपके साथ मैं बबीता त्रिपाठी थी, फिलहाल जाती हूँ, प्रियंका आ गई है, टाटा बाय, टेक केयर, अपनी स्किन का ढेर सारा सवाल ख्याल रखिए, पानी पीजिए खूब सारा, और हाँ जो जो मैम ने बताया है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। बाय।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन में जीएमसी बालयोगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तगमांग से बातचीत की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरक दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुर्ग स्थित एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने डकेडा बायोफार्मास्यूटिकल इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। भारत ने 19 जुलाई को वाणिज्य जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले को लेकर आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लदानोव को तलब किया। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फरबाद में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूं आशियाना प्रोग्राम में। आज हमारे साथ वुमेन स्पेशल सेगमेंट रहता है और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके जज्बों की, उनके हौसलों की, उनके प्रयासों की, उनकी सफलता की। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की SI सीमा ढाका की।

कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा ढाका के प्रयासों की शक्ति की। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली वासियों को सुरक्षा प्रदान करती हमारी दिल्ली पुलिस, शांति, सेवा, न्याय और आज एएसआई सीमा ढाका की शक्ति, प्रयासों की शक्ति हमारे साथ। सीमा ढाका की बात की जाए तो उनका जन्म यूपी के शामली के भज्जू गांव में हुआ। घर में माहौल टीचिंग का था, शिक्षा का था। अधिकतर उनके रिश्तेदार और घर परिवार के लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में सीमा और उनके माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े और टीचर बने। सीमा की आरंभिक पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल के ही सरकारी स्कूल में हुई, भज्जू गाँव के स्कूल में हुई। और जब कॉलेज की बारी आई तो सीमा ढाका रेगुलर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गांव से कॉलेज बहुत दूर था और घर में सभी ने समझाया कि वो डिस्टेंस लर्निंग से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करें, लेकिन सीमा ढाका की लगन थी कि वो रेगुलर कॉलेज से ही पढ़ाई करना चाहती हैं अपनी। और उनकी लगन को देखकर उनके माता पिता ने उनका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में करवा दिया और उन्हें एक साइकिल भी दिलवा दी। सीमा रोज 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने कॉलेज की पढ़ाई करने कॉलेज पहुंचती। एक लड़की जो सूट पहनकर साइकिल चलाते हुए कॉलेज जा रही है, ये बात वहाँ के लोगों के लिए उस वक्त अटपटी सी थी और वो सीमा को बहुत ही अलग नज़रों से देखते थे। लेकिन सीमा इन सभी बाधाओं की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ना चाहती थी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी। वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन कॉलेज में उनकी फ्रेंड्स से उन्हें पता चला कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद की भर्ती खुली हुई है और उनके जो फ्रेंड्स थे वो ये फॉर्म्स भर रहे हैं, तो उनका भी मन हुआ कि क्यों ना दिल्ली पुलिस में जो फॉर्म्स निकले हैं, जो पद रिक्त हैं, उनके लिए ट्राई किया जाए। उन्होंने घर में बात की और फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस के

0: प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव

अपने पुलिस स्टेशन के सीनियर्स ऑफिसर से बात की कि वो केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जो केसेस की जांच पड़ताल के कार्य होते हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती हैं। और फिर सीमा ढाका को 100 नंबर पे, दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पे जो कॉल्स आती हैं उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया। सीमा जब पुलिस केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती तो वहाँ भी लोग उन्हें बड़ी अचरज की निगाहों से देखते थे कि एक महिला पुलिस केस की जांच पड़ताल के लिए आई है। लेकिन सीमा इस काम से हटी नहीं और पूरी लगन और निष्ठा के साथ वो आगे बढ़ती रही।

उनके परिवार वालों रिश्तेदारों से मुलाकात कर गुम हुए बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की और फिर जुट गई गुम हुए बच्चों की तलाश में।

दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका सुबह काम पर लग जाती और कई बार रात को 1-2 बजे तक बिना रुके काम करती रहती थी। कई बार ऑफ ड्यूटी रात को जब उन्हें गुम हुए बच्चों की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
3: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।

0: लोगों से भी।
1: जी पूछिए पूछिए।
0: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है?
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
0: बिल्कुल सही। लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे? क्या लेन देन होता ही नहीं था? बताइए बताइए।
1: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का।

0: हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुंचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुंच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा।
2: नमस्ते सर पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र।

0: लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज हमारा सांगकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं
0: बेटा? ये जो आप मिठाई

0: आज इतनी चहल पहल क्यों है?
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
0: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
2: बेटा, ये जो आप मिठाई

0: ये विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
2: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
0: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
0: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता

0: नहीं उडेल दिया।
1: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
2: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
2: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
2: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
4: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
2: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
2: हाँ।
0: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
5: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है? आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्या करने की आवश्यकता है कि हमारा दिल लंबे समय तक हमारा साथ दे, यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस की, हृदय रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए जैसे हर बार हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप

0: तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश, आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार।
0: और डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए। तो लीजिए, आज वो दिन आ गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और वो आपकी जितनी परेशानियाँ हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुँचेंगे ये आपको वादा करना है। मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊँगी हमारे फ़ोन नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आप वैसे जानते हैं, लेकिन उन श्रोताओं को जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग से के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यंगस्टर्स हैं जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें, हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
2: ज़रूर। मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफ़ी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। बहुत खुश हूँ
0: जी, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारे परिधि यहाँ हैं और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के उस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, व्हाट्सअप का भी मैसेज बॉक्स खुला है और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082 और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए। व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी।
1: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल्व खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक ठीक पेरिकार्डियम होता है उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं, तो एक लंबी लिस्ट है इसमें। कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
0: अच्छा।
1: बहुत मेलिग्नेंसी, तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके।
0: जी, लेकिन

ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिख कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे। इंतजार कर रहे हैं हमें, आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं हम।

0: डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: देखिए खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसम्मी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं
2: जी।
1: दूसरा, टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है। जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जाइटी में हैं तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने कफ सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा। आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी ये होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हाँ, दौड़ते समय अगर आपकी हार्ट बीट 100 हो जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्ट बीट 100, 90, 100 चल रही है, एक बार डॉक्टर

हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया। हाँ, यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है। जो आप खाते पीते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स हैं उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिडेटरी हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का, उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ, उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30 से 40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा जिसके माँ बाप को हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के ही रखता, तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है। और तीसरा है, आबादी बढ़ रही है,

0: वे 200 बाई 100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज कि
1: जी जी
0: ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष उस इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया।
1: जी कई बार ऐसा भी होता है, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ हमने ये देखा है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूँ, या जिम चले गए वहाँ पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है, और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप

0: नहीं नहीं आप एक हमेशा याद रखिए, आप अगर 40 साल 50 साल के युवा हैं तो कम से कम आपका एक बार ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका मेजर होना ही चाहिए। ये तो आप करें या ना करें ये तो रूटीन है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप योगा करते हैं तो ये गलत है, कंट्रोल करिए उसको। तो जो एक सिंपल से टेस्ट है, आपका हीमोग्लोबिन 7 है और आप योगा करने चलेंगे, तो ये आप घर में योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान को साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए।
1: जी, आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे एक मैसेज दिखा है दिव्या का, बिहार से आए, हीमोग्लोबिन इनका 7.9 है, बीपी हमेशा कम रहता है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
0: हीमोग्लोबिन 9 7.9 क्यों है इसकी जांच करानी चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, हो सकता है आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, हमें उसको सप्लीमेंट करना है। अगर हीमोग्लोबिन उससे ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, 7.5 हीमोग्लोबिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी जाँच कराइए।
1: और बीपी लिखा है हमेशा कम रहता है,
0: अच्छी बात है, बीपी कम
1: अच्छा
0: रहना कोई
1: बीपी
0: बीमारी
1: का
0: नहीं है,
1: कुछ इशू इतना
0: कोई
1: नहीं है,
0: बीमारी नहीं है,
1: लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए आपको दिखाना
0: बिल्कुल
1: पड़ेगा।
0: दिखाइए आप,
1: जी
0: बहुत कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है।
1: अच्छा, तो ये टेस्ट होंगे और पता
0: बिल्कुल
1: चलेगा।
0: बिल्कुल
1: जी, और डॉक्टर साहब सुधीर कुमार कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को बुलाते ही मैडम हार्ट अपने आप ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आया करिए,
0: नहीं
1: इतने
0: नहीं
1: सारे श्रोताओं का
0: बिल्कुल
1: हार्ट ठीक हो जाएगा। और हमने डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब को याद किया था, और आपने, मुझे याद है आपने मैसेज भी किया
0: जी,
1: था, और डॉक्टर साहब की एक कहावत हमें याद रहती है, एक तो करेला ऊपर से नीम
0: नीम
1: चढ़ा,
0: चढ़ा।
1: तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे, कि आपने क्यों कहा था, क्यों कही थी ये
0: मैंने कहा
1: कहावत?
0: था कि देखिए, आपको अगर आपके फैमिली में आपको माँ बाप को डायबिटीज़ है, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, आपके माँ बाप को हार्ट अटैक है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही की, तो एक तो करेला ऊपर से नीम
1: नहीं
0: चढ़ा,
1: चला
0: तो
1: तो
0: आपको बीमारी बहुत जल्दी होनी है।
1: जी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा था, और अगर आप ये बात याद रखते हैं तो ये वाली बात भी याद रखते
0: बिल्कुल
1: होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर कुमार से, सुधीर जी, आपने हमें मैसेज किया, हमें याद दिलाया है डॉक्टर साहब की बात, जो और सभी श्रोताओं तक पहुंची है। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप यूं ही हमें लिखते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में बात हो रही है आज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर, कैसे हृदय रोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर राकेश यादव, और हमारे साथ हमारी युवा प्रतिनिधि परिधि मित्तल साथ में है। आपके प्रश्न हमें लगातार मिल रहे हैं, हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार
2: जी, मैं आईपी पांडे बोल रहा हूँ हौजखास दिल्ली से।
1: जी
2: डॉक्टर साहब को और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, एक्चुअली ऐसा हुआ कि दो साल पहले मेरे को गैस में थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा और ईसीजी करने को कहा। ईसीजी के बाद उन्होंने टीएमटी कहा और टीएमटी में भी कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराया, सीटी स्कैन कराया, और जयप्रकाश नारायण में मैंने कराया था सीटी स्कैन, उसमें कुछ भी नहीं आया जबकि टीएमटी और ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम दिखाया। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है और इन बिटवीन मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू
3: किया? अगर आपको सीटी स्कैन नॉर्मल है सीटी एनजीओ तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, बट अगर ईसीजी में कोई और प्रॉब्लम है, वो और तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं कि आपकी ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। टीएमटी अगर माइल्ड पॉजिटिव और सीटी नॉर्मल है तो इसके मतलब आप नॉर्मल, आपका हार्ट का एंजियोग्राम है, डोंट वरी।
2: डॉक्टर साहब उन्होंने एक्चुअली सीटी स्कैन को तो नॉर्मल बोल दिया लेकिन जो टीएमटी हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा।
3: अरे टीएमटी को उठा के फाड़ के, टीएमटी को फाड़ के आप फेंक दीजिए, जब एक बार आपका सीटी हो गया उसमें सब नॉर्मल है तो टीएमटी का कोई रोल नहीं है।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रेगुलर योगा करता हूँ और मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, तो क्या मुझे चांस बनता है क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने की?
3: नहीं होगा, आप बढ़िया योगा करिए, बढ़िया वॉक करिए, अगर सीटी एनजीओ नॉर्मल है तो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी शून्य के करीब है।
2: थैंक यू डॉक्टर,
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक और साथी हमारे फोन लाइन पर है। हेलो
4: नमस्ते शालिनी
1: जी। नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, नाम बता दीजिए।
4: सर मैं सतबीर सिंह, गांव बिगान सोनीपत हरियाणा से।
1: जी जी बताएं।
4: डॉक्टर साहब मेरे हार्ट जो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या है डॉक्टर साहब?
3: आपको हार्ट की कोई दिक्कत है?
4: वो मेरे हार्ट में कुछ खिंचाव सा होता है डॉक्टर साहब।
3: आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है? आपका इको खराब है?
4: दिक्कत नहीं है,
3: तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
4: हुआ था तो था।
3: देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हार्ट से आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ उसकी एनाटॉमी में कोई दिक्कत है तो अलग बात है, वो हम बिना आपका इको देखे बता नहीं सकते, पर एज फार एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हार्ट आपको कोई सिम्टम नहीं है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है।
1: चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप कुछ पूछेंगे युवाओं के लिए संबंधित?
5: हाँ,
1: कुछ प्रश्न,
5: मेरा
1: आपके
5: प्रश्न
1: पास?
5: है अभी डॉक्टर साहब से, जब मैंने पहले पूछा था उन्होंने ई सिगरेट की बात की थी, तो मेरा ये प्रश्न था कि आजकल बहुत से युवा

0: ई सिगरेट या वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि अगर उसमें निकोटीन नहीं है या वो निकोटीन फ्री है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? क्या ई सिगरेट या वेपिंग, चाहे उसमें निकोटीन हो या ना हो, दिल और फेफड़े की सेहत पे कोई भी असर नहीं डालता?
1: ये वेपिंग बेसिकली ई सिगरेट निकोटीन ही होती है, उसको कहा जाता है वो प्योर फॉर्म ऑफ निकोटीन है। सिगरेट में कहा जाता 7,000 चीज़ें सिगरेट से पेट अंदर जाती हैं, वेपिंग में कहा जाता सिर्फ निकोटीन जाता है। बट एक चीज़ मानिए, निकोटीन जो है वो एडिक्शन है, इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी है। हो सकता है आपको हार्ट अटैक ना करे, बट ग्रेजुअली ये आपके दिमाग को ख़राब करेगा, एडिक्शन लाइबिलिटी है। और बहुत बार जैसे यूथ लेता है, इम्पोटेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट कारण वेपिंग है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ग्रेजुअली इम्पोटेंट हो रहे हैं बच्चे, स्किन की प्रॉब्लम निकोटीन से होती है। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और वेपिंग में आप देखोगे दिन भर पीता रहता है, तो वो भले कहता है कि साहब वेपिंग में हम 40 वेप लेते हैं तो एक सिगरेट का निकोटीन जाता है, बट वो दिन भर आप ले रहे हैं तो आप बताइए कितनी निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेपिंग देश में बैन है, और मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि ये बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन जाता है।
0: जी, तो ये एडिक्शन इज
1: एडिक्शन है,
0: मोर अ
1: बहुत बड़ा
0: प्रॉब्लम।
1: एडिक्शन है।
0: जी, हमारे एक और साथी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी।
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी काजिम साहब, बताएं क्या पूछना है।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार। सर,
1: नमस्कार।
2: मुझे पूछना ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि हार्ट में कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सबसे ला जो है जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इलाज कराते हैं, तो हार्ट कैंसर के बारे में बताइए विस्तार से।
1: हार्ट में जो कैंसर होता है वो हार्ट में कैंसर उसकी मसल में हो सकता है, उसके फाइबर्स में हो सकता है, उसके पेरिकार्डियम पे हो सकता है, और ये कभी कभी स्लोली ग्रो करता है। तो हार्ट के अंदर कैंसर है तो सिम्टम मिलेंगे कि आपकी सांस फूलेगी, सांस फूल के वॉल्व ख़राब कर सकता है। तो हार्ट में जो भी कैंसर है वो भी ऐसा नहीं है कि साइलेंट होते हैं, और इसमें कुछ कैंसर का इलाज है, कुछ का नहीं है।
0: चलिए, धन्यवाद, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया। और डॉक्टर साहब, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास। एक ये मैसेज है, लिखने वाले हैं डॉक्टर आदित्य बत्रा के बारे में, बातचीत जो अभी हमने न्यूज़ सुनी थी उसके बारे में उन्होंने कुछ पूछा है। और रोहतक से हमें मैसेज किया है आर एस मलिक जी ने, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मैं 70 साल का हूँ और मेरे 2 बार स्टेंट पड़ चुके हैं, और मैं इको स्प्रीन 75/40 ले रहा हूँ। क्वेश्चन इनका बहुत स्पष्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन एक तो ये वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे वेट लॉस है और क्या मैं दवाई रिड्यूस कर सकता हूँ।
1: देखिए बेसिकली एस्पिरिन तो 75 से कम नहीं कर सकते, स्टैटिन 40 मिल रही है, तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अक्सर स्टैटिन से आपका वेट लॉस बहुत रेयर होता है, बट होता क्या है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आप अपनी ज़िंदगी को सुधार लेते हैं, तो आप कम वैसे ही खाते हैं, आप वॉक करना शुरू कर देते हैं,
0: ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, डीप
1: तो
0: फ्राई नहीं
1: देन तो
0: खाएंगे।
1: आपका वेट अपने आप कम हो
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: अगर आपने ये सब काम नहीं किया है और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं, बट अगर
0: ठीक है।
1: आपने अपनी डाइट और सब रेस्ट्रिक्ट कर रखा तो वेट लॉस तो स्वाभाविक है।
0: और मेडिसिन को अपने से कम
1: नहीं,
0: ज्यादा करना
1: जो
0: कितना?
1: दवा दी गई है उसको बिल्कुल कम नहीं करना, इसमें कुछ दवाएं आजीवन खाई जाती हैं और
0: और
1: उसको
0: जितना
1: अपना
0: डॉक्टर बोले, और जब उसको कम
1: बस
0: करवाना है तो डॉक्टर ही से
1: बिल्कुल
0: लेकर एडवाइस अब कम
1: बिल्कुल
0: करें।
1: बिल्कुल
0: मोनीश इदरीसी बिलासपुर यूपी से इन्होंने हमें लिखा है कि मेरे जीजा जी को पसीना बहुत आता है, और क्या ये भी कोई संकेत है? क्या दिल की बीमारी का संकेत
1: नहीं,
0: होता है अगर
1: बिल्कुल
0: पसीना आए तो?
1: कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, इसका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा सा अपने को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए।
0: जैसे लक्षणों की जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं? तो कई बार ये कहा जाता है पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है
1: वो
0: आपको।
1: वो एक एपिसोडिक है, उस समय आपको बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत बड़ा हुआ है,
0: ओके,
1: बट अगर उनको ज़्यादा पसीना आता है, दिन भर
0: नॉर्मल है
1: आता है,
0: अगर उनके
1: नॉर्मल है,
0: लिए
1: तो उसके लिए
0: रूटीन
1: कोई
0: में आता
1: प्रॉब्लम
0: है
1: नहीं।
0: तो ऐसी कोई बात नहीं है।
1: वो बिल्कुल वो तो
0: जी जी
1: एपिसोडिक, उस समय आपको पसीना आ रहा है।
0: और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत अलार्मिंग होते हैं?
1: यही चेस्ट पेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके चलने पे सीने में दर्द हो रहा, बहुत सीवियर, अक्सर एसिडिटी की फीलिंग होती है कि जलन हो रही है पेट में, तो अगर वो अनयूजुअल है और आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कभी दबाए ना, उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास मिले।
0: और कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि शोल्डर या
1: वो भी
0: हाथ
1: है,

0: फिरने में हो रहा है तो वो एंजाइना है। कोई भी पेन बहुत सीवियर हो रहा है जिससे आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो वो भी एंजाइना के सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी एंजाइना सिर्फ वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, आपको एक दो वॉमिटिंग हुई पता लगे इन्फीरियर वाले में आई है। तो कोई सिम्टम्स ओल्ड एज में इग्नोर ना करें अगर वो आपको ट्रबल दे रहे हैं
1: जी। और क्या ये सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं अगर वो आदमी रेस्ट करे या बढ़ जाते हैं?
0: बेसिकली रेस्ट करने में कम तो हो जाते हैं, बट एक्यूट हार्ट अटैक जो पड़ रहा है उसमें तो आर्टरी आपको खोलनी है, आर्टरी तो बंद हो गई है। जो एंजाइना होता है उसमें आर्टरी 80% 90% तक बंद होती है, तो वो आगे का लोड नहीं ले पाती। जैसे रेस्ट करेंगे वो फ्लो चला जाएगा, बट जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है उसमें तो आर्टरी बंद हो चुकी होती है।
1: ओके,
0: उसमें रेस्ट करने से दर्द कम नहीं होगा, हाँ आपको अस्पताल ले जाने में सहूलियत होगी।
1: जी जी, एक और हमारे साथी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी,
2: मैं उमेश गाजीबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, बताएं उमेश जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे इस टाइम घबराहट होती है कभी कभी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता है किस बीमारी का संकेत है और मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए।
0: पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। घबराहट बहुत बार आपकी एंजाइटी से होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपना असेसमेंट कराइए कि ये घबराहट किस कारण हो रही है, तब इलाज कराइए। ज़्यादातर ये घबराहट जो होती है हम उनको एंजाइटी के कारण ही होती है, और साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट लोग होते हैं।
1: तो मुझे लगता है आप तक उमेश जी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले आप इसको रूल आउट कर लीजिए कि कोई स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है आपको। मनीषा जी हमें लिख रही हैं, 75 ईयर्स की हैं, रांची में रहती हैं। डॉक्टर साहब मुझे AFIB हो गया है, ये कोई बीमारी का नाम लिखा है उन्होंने।
0: AFib।
1: ओके, इन्होंने कैपिटल
0: एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया 75 साल में, कोई बात नहीं, इसका इलाज है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसकी दवा है, कंट्रोल करिए।
1: अच्छा, ये हार्ट डिजीज है।
0: हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है इस एज में।
1: सावधानी कुछ लिख सक,
0: दवा खाइए, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवा खाइए, ये आप अपनी अकल से इसको ठीक नहीं कर सकते।
1: ठीक है, इन्होंने लिखा दवाई तो मैं खा रही हूँ, पर कोई सावधानी हो तो आप बता।
0: कुछ नहीं है, आप बस योगा कर सकती हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो उसमें भी पाया गया ये इसके इंसिडेंस कम हो सकते हैं।
1: जी, तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ये बीमारियां हो सकती हैं, तो किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं? अगर एनुअली हम कोई टेस्ट कराना चाहें तो कर सकते हैं क्या? प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं।
0: बेसिकली एनुअल चेकअप का जो फंडा है कि आप हमेशा अपना एक साल में एक बार ब्लड प्रेशर, अगर आपको नहीं है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कराएं, तीन बस।
1: अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जैसे आजकल बहुत
0: इलाज कराएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इलाज कराएं, शुगर बढ़ी हुई तो इलाज कराएं, ये और आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो जाए। इतना अगर आप कराते रहते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगी।
1: जी, तो प्रिवेंशन पर हम और बात करेंगे। हमारे एक श्रोता भी आ गए फोन लाइन पर, मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेने वाली थी लेकिन पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, हाजी शालिनी मित्तल जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं PR साहू बोल रहा हूँ, लक्ष्मी विहार बुढ़ारी से।
1: जी जी साहू जी, बताएं क्या प्रश्न है?
3: मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि पहले मैं 10 साल पहले एमलिव डिफिन जो ये BP की दवाई ले रहा था, तो अभी ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया Telma-14। तो सर उससे जो है ना कम हो गया, मतलब ये हो गया अब 130 और 64।
0: बढ़िया, खाते रहिए दवा से कंट्रोल में।
3: तो सर ये मतलब कंटिन्यू रखना है या छोड़ना है?
0: कभी नहीं छोड़ा जाता, बीपी की दवा अगर एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलनी है, कभी मत छोड़िएगा उसको।
3: अच्छा अच्छा, ठीक सर, यही मैं पूछना चाह रहा था।
1: धन्यवाद, आपको जवाब मिल गया। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, समय कम है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर रहेंगे 4 बजे तक। क्या आपके क्वेरीज हैं आप ज़रूर पूछिए। हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर। हमारे साथ परिधि हैं। परिधि, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
1: मैंने जैसे शुरू में बताया था कि यूथ का मेरा भी काफ़ी बहुत ख़राब स्केड्यूल हो गया है, बिकॉज वर्क है, लेट तक चल रहा है, लेट उठ रहे हैं, टाइम का कुछ वो खाने पीने का कुछ वो है नहीं स्केड्यूल। तो अगर किसी व्यक्ति का स्लीप स्केड्यूल हमेशा से ही इरेगुलर हो तो क्या शरीर को इसकी आदत
2: नहीं
1: पड़
2: सकती? नहीं पड़ सकती,
1: क्या उससे बीमारियों का खतरा
2: बिल्कुल
1: कम हो जाएगा?
2: बढ़ जाएगा। देखो, अच्छा। हमेशा याद रखो, स्लीप जो है वो आपके शरीर में दिमाग को ही नहीं, शरीर के हर अंग को रेस्ट देता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लीप के चार साइकिल होते हैं। अगर आप चार साइकिल प्रॉपर नहीं कवर कर सकते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी नहीं है तो आप सुबह चिड़चिड़े बनेंगे, आपको थकान रहेगी, पैर में दर्द रहेगा। तो ये जरूर मानिए कि

0: स्लीप अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है, और आदत, अगर आप इररेगुलर स्लीप में हैं तो आपकी आदत नहीं बन जाएगी, आपका शरीर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात है, आजकल जो मल्टीनेशनल्स में युवा काम कर रहे हैं, जो रात में 2 बजे तक काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद 4 बजे तक पार्टियाँ मत करिए, 2 बजे काम बंद करके खाना खाइए, सो जाइए, और सुबह उठिए 8 बजे 9 बजे। आप ये मत कीजिए कि 4-5 तक पार्टियां होती हैं, फिर शरीर आपका इतना थक चुका होता है कि आप 4 घंटे की स्लीप से शरीर के लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो जाते हैं वो निकाल नहीं पाते, तो दिन भर थकान होती है। दूसरी बात, आप अपना, अगर आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो 2 चीज़ ज़रूर निकालिए, योगा ज़रूर करिए। योगा से क्या होता है, आप जो भी प्राणायाम की पद्धतियाँ करते हैं उससे आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम अप होता है, आपका लंग एक्सपेंड होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, तो वो कर लीजिए। जिम, अगर आप दिन भर इतना भाग रहे हैं और फिर जिम करने जा रहे हैं तो और थकान अपने को करा रहे हैं, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेक्टिक है। और दूसरी बात है इंटरमिटेंट ब्रेक, वो बहुत जो, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आपकी मीटिंग दोपहर में 2 बजे शुरू हो और रात में 2 बजे तक चले, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मीटिंग के बीच में अपने को रेस्ट देने के बजाय और टॉर्चर करते हैं। तो जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो तो ज़रूर बीच बीच में रेस्ट लें। जापान का आप, जापान में लोग काम करते हैं उनको हर 2 घंटे के बाद स्लीपिंग रेस्ट मिलती है, हम नहीं लेते। हमें 2 घंटे की छुट्टी मिली भी तो भी हम टहलने चले जाएंगे।
1: जी
0: सॉरी, तो आपकी उस लाइफ स्टाइल को भी मॉडिफाई करके आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकती हैं।
1: जी अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है मेरा कि ऐसे हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स क्रिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि मैं एक ही तरीके का खाना खाता हूँ 6 महीने, मेरी बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाती है। बट क्या ये सही है, क्योंकि क्या आपको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मिल रहे हैं अगर आप सेम ही तरीके का खाना खा रहे हैं 6 महीने?
0: देखिए, सेम तरीके का खाना क्या होता है, जैसे हमारे गांव होते थे, हमारे बचपन में हमें क्या मिलता था, हमें सब्जी मिलती थी, दाल मिलती थी, पराठा मिलता था, चावल मिलता था, दही मिलता था, अचार मिलता था, कभी कभी राजमा छोला मिल जाता था। तो अगर आप इसको सेम माने तो ओके है, बट आप कहें मैं राजमा और चावल ही 6 महीने खाऊंगा, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज में हर चीज होती है। हमारे जो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी जिसमें 8 कटोरा होते थे थाली में, उसमें छोटी सब्जी जबली वो सब अलग अलग होती थी,
1: थाली सिस्टम जो
0: थाली सिस्टम होता उसमें सब चीज़ होता था,
1: जी
0: तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो कभी भी एक पर्टिकुलर डाइट के फेवर में मत जाएं। आप नॉर्थ की रहने वाली हैं तो साउथ के डॉट के फेरे में मत जाएं। वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपके पिछले 1000 सालों से आपके एंसेस्टर यही खाते आए हैं, आपके पेट के में दाल चावल है, और सीधे जाके आप डोसा खाने रोज लगेंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। ये मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ।
1: जी
0: आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है उसको खाती रहिए आप।
1: जी, तो डाइट पर मैं चाह रही थी बात करने की और परिधि ने पूछ लिया और काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल की भी बात हम कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि खाकर सो जाएं, तो हम जनरली कहते हैं कि फौरन सोना नहीं चाहिए, तो ये कहीं विरोधाभास होता है, क्या किया जाए?
0: एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, खाने के बाद इमीडिएट सोने जाएंगी, और आप दिक्कतें हचक के कभी मत खाइए, आपका पेट 1/3 खाली रहना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, तो अगर आप हचक के खाएंगे तो जैसे लेटे ही आपके इसोफेगस में खाना आने लगेगा, तो थोड़ी से 10 मिनट 15 मिनट बैठिए तब सोइए। एक कंसेप्ट, हचक के खाने का बंद करें, जब पेट आधा खाली हो तो छोड़ दें, फिर 2 घंटे बाद खा लें। कम कम खाइए, बार बार खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्ब्स लीजिए, और सब चीज खाइए।
1: जी
0: ये है अच्छी डाइट का मतलब।
1: जी, और आप एक बात हर बार जब आते हैं तो बोलते हैं खुश रहिए,
0: हाँ
1: ये बात आप हर बार बोलते हैं, तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगी कि
0: बिल्कुल है।
1: खुश रहिए, आपने ये बात बोली, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
0: आप खुश रहेंगी तो आप हर काम अच्छा करेंगी, आप दुखी रहेंगी तो हर काम दुखी करेंगी।
1: जी बिल्कुल, और जैसे लाइफस्टाइल की भी हमने बात की, खान पान की, कुछ तनाव या गुस्सा या नींद ठीक से ना हो किसी,
0: बहुत खराब चीज है।
1: जी
0: तनाव, गुस्सा, नींद, आप गुस्सा करिए पर गुस्से से तनाव में मत आइए। मैं बहुत चिल्ला देता हूँ, वो गुस्सा इसलिए कि उसको सही करना है, बट गुस्से से आप अगर तनाव पे आ गई, तनाव से आपको नींद नहीं आई, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी,
1: तो वो भी इम्पैक्ट करता है।
0: आप खाना अच्छा नहीं खाएंगी, आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगी, आप जंक फूड ज्यादा खाएंगी, आप चिड़चिड़ी होंगी, आपका

0: नहीं होगा, आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप खुशी खुशी जाएंगी, अरे यार काम कर लेंगे, वहां जाके दोस्त से हंस के बात करेंगी, किसी ने काम नहीं किया चलो हो जाएगा, आप देखिएगा आपका वर्क एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी।
1: तो माइंडसेट भी काफी
0: बिल्कुल बहुत
1: इम्पोर्टेंट
0: जरूरी है, और ये स्वस्थ शरीर के लिए सबसे अच्छी बात हम कहते हैं अच्छे वचन, अच्छे विचार
1: है। तीन
0: और अच्छा खाना।
1: चीजें
0: तीन
1: बेहद
0: चीजें अगर
1: जरूरी
0: आप
1: हैं।
0: फॉलो करेंगी तो आप शरीर के हर अंग को स्वस्थ कर सकती हैं।
1: तो हमारे पास समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो धन्यवाद भी दे रहे हैं आपको। बहुत सारे उन्होंने प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो बीमारियों का और दवाइयों का, पर क्योंकि हम आज खासतौर पर प्रिवेंशन पर बात कर रहे थे तो मैं ले भी नहीं पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है। लेकिन एक तो ऐसे आपके बारे में कुछ मैसेजेस हैं तो मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश यादव का जवाब देने का स्टाइल बहुत ही लाजवाब है। थैंक्स डॉक्टर साहब। प्रकाश जी लिख रही
0: थैंक
1: हैं
0: यू थैंक
1: रोहिणी
0: यू।
1: दिल्ली से, और साथ ही साथ एक प्रश्न थोड़ा अलग हटके, नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से लिखा है कि आजकल डॉक्टर यादव का बहुत अच्छा लगता है हमें प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज दिल की बात हो रही है तो क्या कारण है लोगों को दूसरों के प्रति दिल में जगह कम हो रही है? क्या यह भी दिल की बीमारी मानी
0: अरे
1: जाए क्या?
0: बिल्कुल है, आप अपने दिल के दुख अगर दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ही दुखी रहेंगे। आप अपने दुख दिल के प्यार को दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो प्यार फूलता फूलता फट जाएगा। ये बिल्कुल सच है
1: ये सच है।
0: कि दिल खुश तब रहेगा जब वो बांटा जाए किसी के साथ।
1: जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास समय क्योंकि ज़्यादा नहीं है, हम धन्यवाद ही देना का समय बचा है। बहुत सारी और बातें हैं डॉक्टर साहब, आपको पुनः आना होगा, आपको हम
0: बिल्कुल
1: आमंत्रित करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के छूट गए। तो मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर राकेश यादव का, जो प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी में, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली में, कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद देंगे परिधि मित्तल को कि आपने समय निकाला है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो युवाओं के मन में चलते हैं जो शायद हमें ध्यान न रहते, आपने वो डॉक्टर साहब से पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित की गई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं, बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में आज

270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। और अंत में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणय को पहले दौर में मलेशिया के लियोन जून हाओ से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा जेन प्रोग्राम में। आज करियर पाथवेज हमारे साथ रहता है और आज हम बात करेंगे करियर इन आयुर्वेद की। जी हाँ जनाब, आयुर्वेद की बात की जाए तो भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों साल पुरानी है और बहुत ही फेमस चिकित्सा पद्धति है, जिसका बोलबाला, जिसकी धाक आज भारत के साथ साथ विदेशों में भी धूम मचा रही है। अगर आप आयुर्वेद में, आयुर्वेद चिकित्सा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि इस करियर ऑप्शन को चुनकर आप भी पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हैं आयुर्वेद के तौर पर, आयुर्वेद डॉक्टर के तौर पर, आयुर्वेद चिकित्सा से सबका इलाज करते हुए। और आज बेहद ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट भी रहेंगे, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। उनसे भी जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन करियर बनाया आयुर्वेद के क्षेत्र में और अब वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अगर आप भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि धूम मचाने के लिए ये क्षेत्र बहुत ही शानदार है।

लेकर आए हैं करियर इन आयुर्वेद। आपके लिए आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान। आयुर्वेद मतलब होता है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का उपचार किया जाता है, जिससे मनुष्य लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जी सके। और आज करियर पाथवेज में हम बात कर रहे हैं करियर इन आयुर्वेद की, आयुर्वेद चिकित्सा की। आयुर्वेद में करियर बनाने के लिए आपका 12वीं में पास होना अनिवार्य है, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और साथ ही साथ 12वीं में आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा पास करनी होगी, और इसके बाद काउंसलिंग सेशन रहता है, और जो रैंकिंग आती है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। आप एडमिशन उन कॉलेजेस में पा सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत में कई सारे आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनकी अपनी खुद की एंट्रेंस परीक्षा रहती है, एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उसको क्लियर करके आप उन कॉलेजेस में भी एडमिशन पा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो इनका क्राइटेरिया एक जैसा ही रहता है, नीट एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग रहता है, और उसकी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर पूरी दी गई होती है। फिलहाल हम बात करेंगे उन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहां से आप करियर इन आयुर्वेदा में कोर्सेज कर सकते हैं। कई सारी बातें हैं आयुर्वेद के क्षेत्र की जो आज आपको इस प्रोग्राम में जानने को मिलेगी। जी हाँ, बस आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ यूं ही अपना साथ बनाए रखना होगा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आय हाय,
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी रेनियो रेनबो करियर पाथवेज प्रोग्राम आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन आयुर्वेद की। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स की जो सबसे चिंता का कारण होता है ना, वो उनकी पढ़ाई नहीं होता बल्कि फ्यूचर में वो किस तरफ जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने आता है। बोर्ड परीक्षाओं के बाद सबको लगता है कि किस ओर जाएं, और जब वो नीट की परीक्षा देते हैं तो उसके बाद उनका एम रहता है कि वो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन नीट की परीक्षा पास करने के बाद भी कई सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, और आज उन्हीं में से एक की बात कर रहे हैं, वो है आयुर्वेद की। और आयुर्वेद अपने आप में बेस्ट ऑप्शंस है, जी हाँ। और अगर आयुर्वेद पद्धति की बात की जाए, चिकित्सा पद्धति की बात की जाए, तो दुनिया भर में इसको अपनी पहचान मिल चुकी है और भारत में आयुर्वेद का बोलबाला है। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम आज आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी से, जो विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त डॉक्टर तो हैं ही, इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, आयुर्वेद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, बहुत सारे अवार्ड्स उनके पास, और वो एफएम रेनबो के एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। हेल्पलाइन प्रोग्राम में कई बार उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर, जी हाँ, जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया है आयुर्वेद से रिलेटेड। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने आयुर्वेद को अपने करियर के तौर पर चुना। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते प्रियंका जी।
0: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
1: थैंक यू सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: जी सर, आप डॉक्टर इन आयुर्वेदा हैं और बहुत सारे आपने अवार्ड्स जीते हैं, इसी के साथ साथ आप आरएमएल हॉस्पिटल में भी चीफ आयुर्वेदिक ऑफिसर के रूप में कार्य।
1: मैं करेक्ट कर दूं, मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में होता था चीफ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट फॉर 16 इयर्स, नॉट आरएमएल, आई वाज इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। जी
0: ओके, दैट्स वंडरफुल, वो भी बहुत ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल है दिल्ली का।
1: जी
0: सर, तो शुरुआत किस तरीके से हुई आपकी और किस तरीके से आपने चुना आयुर्वेदा को एज अ करियर?
1: बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रियंका। जैसे आज के बच्चे नीट देते हैं, ऐसे मैंने हमारे समय पे भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको हम CPMT बोलते थे, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, एंड उसमें ऊपर के लोग जो है MBBS पा जाते थे, फिर मेरिट में जो MBBS के नीचे नंबर जिनके आते थे वो BMS पा जाते थे। तो डेफिनेटली मेरा 3 मार्क्स से प्रियंका रुका था, तो मुझे MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आई वॉज टू ऑप्ट आयुर्वेद। तो BMS में मैं मतलब च्वाइस से नहीं गया था, मुझे बस ये था कि डॉक्टर बनना है, और MBBS में नहीं हुआ ओके, तो फिर मैं आई एक्सेप्टेड एडमिशन इन BMS। लेकिन प्रियंका बड़े ही खुले मन से कह रहा हूँ कि उस समय जो मुझे थोड़े दिन के लिए दुख हुआ था कि मैं MBBS में नहीं गया, लेकिन आज मुझे लगता है कि ईश्वर भाई सो काइंड टू मी कि मुझे उसने MBBS ना देके आयुर्वेद दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमारी अर्निंग है, जो आज मेरा फेम है, जो आज मेरे सोशल एंगेजमेंट्स हैं, आज जो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और एक व्यक्ति को लाइफ में जो कुछ चाहिए होता है वो मुझे मिला है जस्ट बिकॉज आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगर मैं MBBS होता तो शायद मुझे इसका 1/4 मिलता। तो इसलिए हाँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उस समय आयुर्वेद मिला, और मैंने फटाफट उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो विद इन 1 ईयर मेरे को सही में आ गया कि भाई मैं मतलब अननोइंगली मैं जैसे समुद्र के अंदर कूद करके मेरे हाथ में एक रत्न लग गया है, और वो रत्न जो है फिर मैंने बस पकड़ लिया, और वो पकड़ने में मेरा डेडिकेशन भी था, मेरा डिसिप्लिन भी था, और मतलब मैंने फिर उसको कभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, फिर मैंने उसको यूटिलाइज किया, और आज ये कंडीशन है कि आप सोचिए कि आई एम फॉर्चुनेट टू हैव 1 daughter and 2 son। मेरे दोनों बेटे जो हैं मेरे साथ आयुर्वेद में मैंने जोड़े, नहीं तो आज अगर मैं मुझे अब प्रैक्टिस करते हुए प्रियंका, इट वाज मैं आई कंप्लीटेड माय MD इन ईयर 2002, तो BHU से मैंने MD किया, और आज 24 साल हो गए मुझे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए। मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर का मतलब है आई राइट ओनली एंड ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो अच्छा लगता है मुझे, हम सोसाइटी में आज एक स्पेशलिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं, जो काम किसी का कहीं नहीं बन रहा होता है वो मेरे पास आके बन जाता है, भगवान बनाते हैं, भगवान धनवंतरी बनाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि सच्ची में मैं बोलूं तो आप अगर MBBS ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद आप MD करेंगे, DM करेंगे, MCH करेंगे, देन यू विल बी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट। लेकिन आयुर्वेद में तो अगर आप केवल BMS कर लेते हैं तभी आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एटलीस्ट आप एक ऑप्शन देते हैं सोसाइटी को, बुखार कहीं से ठीक नहीं हो रहा, आप एक बड़े हॉस्पिटल से दूसरे बड़े एलोपैथिक हॉस्पिटल में मूव करते हैं, तीसरे में मूव करते हैं, परेशान होते हैं, आप आयुर्वेद में आइए, हो सकता है कि आयुर्वेद से आप ठीक कर दें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं जोर शोर से आपके माध्यम से, एफएम रेनबो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फटाफट जाके बीएमएस में एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा है,
0: गोल्डन अपॉर्चुनिटी
1: गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।

0: डाउटेबली कहीं दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है कि
1: जी
0: अगर सी प्रियंका किसी को क्या सी हम सब लोग जब कोई कैरियर चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में चार पांच बातें होती हैं यार, अच्छी हमारी इनकम होनी चाहिए, ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: रिस्पेक्ट
0: थोड़ा
1: होनी
0: सा अगर
1: चाहिए
0: उसी इनकम
1: समाज
0: के साथ में हम थोड़ा सा फेमस भी हो जाएं, ठीक
1: में।
0: है, अच्छा हमारे सोशल एंगेजमेंट रहे, लोग हमें मतलब हम बाहर निकले तो राम राम करें, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, दे आर अर्निंग टू मच बट बाहर लोग जानते नहीं है उनको,
1: बिल्कुल
0: साइंटिस्ट है
1: पढ़ाई
0: उनको बाहर
1: में।
0: लोग जानते नहीं है, लेकिन
1: हाँ
0: डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जब बाहर निकलते हैं तो मतलब पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, 10 लोग लिफ्ट देने के लिए, आपका मन होता है थोड़ा सा पैदल चल रहे, लेकिन 10 लोग लिफ्ट देने के लिए एक अपनी गाड़ी रोकते हैं, डॉक्टर साहब आ जाओ,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: सोशल एंगेजमेंट, एंड देन आयुर्वेदा इज द ओनली साइंस जो आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रखता है, वो मन की बात करता है, वो आत्मा की बात करता है, वो सत्व रज तम की बात करता है,
1: हाँ
0: सच
1: जी
0: ए वंडरफुल एक्सट्रीम आई थिंक आयुर्वेदा इज, कि कुछ भी नहीं सोचना, द ओनली थिंग इज कि आप इसे जब एक्सेप्ट करें तो बहुत दिल से एक्सेप्ट करें, फिर ये सब कुछ आपको देगा जो आपको चाहिए, सब कुछ, बल्कि आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा।
1: जी बिल्कुल सर, आप स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल हैं सर, बिकॉज़ कई बार क्या होता है नीट क्लियर करने के बाद जब उनको अपनी फील्ड में नहीं मिलता है डिज़ायर्ड फील्ड रहती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया अपने करियर के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कितने हाई पॉइंट तक आप पहुँच चुके हैं इस वक्त, तो उससे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है।
0: प्रियंका मैं एक एक चीज और कहता हूँ, आपकी बात में एडिशन करता हूँ कि देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ तो देयर आर टू डायमेंशन, एक होता है कि हमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कि कैसे हम हेल्दी बने रहें, नंबर दो पे आता है आतुरस्य विकार प्रशम च, अगर आप बीमार पड़ जाए तो कैसे अपने को ठीक करें। आप जानते हैं कि आज अगर आप कहीं भी बोलते हैं कि साहब मैं आपको वो डाइट सिखाता हूँ, वो लाइफस्टाइल सिखाता हूँ जो आपको बीमार ना पड़ने दे, तो यू कैन चार्ज मोर देन व्हाट ए ट्रीटिंग डॉक्टर इज चार्जिंग।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: ये
1: कहा
0: चीज
1: आपने।
0: जो है जो खान पान को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके, हर चीज को लेके, पानी कैसे पीना है,
1: जी
0: दूध कैसे पीना है, दालें कैसे खानी है, आपको दही के बारे में, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है जो आज पूरी सोसाइटी जानना चाह रही है, बिकॉज एवरी वन इज फाइटिंग फॉर हेल्थ, तो
1: जी
0: वो वास्तव में अगर कोई दे सकता है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर दे सकता है,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज
1: सही
0: आयुर्वेदा इज द ओनली लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड
1: है।
0: जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कंप्लीट तरीके से खाने पीने के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में पूरा हमको जो है बताता
1: जी बिल्कुल, आयुर्वेदा से बेहतर
0: है।
1: कुछ नहीं। तो सर चलते चलते आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें आयुर्वेदिक क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर चुनना चाहिए तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आप उन्हें मोटिवेट करेंगे इस क्षेत्र में
0: देखिए
1: आने
0: मैं
1: के
0: तो
1: लिए?
0: यही कहना चाहता हूं कि क्यों भीड़ में खोना चाहते हो, आप अकेले में आओ, बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा है अभी, स्टिल बहुत कम हैं जो जो मेरी इस बात को किसी भी शहर से सुन रहे हैं एफएम रेनबो के माध्यम से, मैं कहता हूं कि सोचिए आपके अपने शहर में मेडिसिन में कितने डॉक्टर्स आपको दिखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कितने दिखेंगे, ऑर्थोपेडिशियन कितने दिखेंगे, लेकिन ईमानदारी से देखिए कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले कितने होंगे, तो शायद आप एक भी नाम ना बता सकें। तो आप भीड़ में क्यों खोना चाहते हैं, आप पहले बीएमएस कीजिए पूरे डेडिकेशन के साथ में, फिर अपने अपने शहर में एक ऑप्शन बन के, स्पेशलिस्ट बन के, बड़ा सा बोर्ड लगा के, आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर, यू प्लीज कम टू मी फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और आप देखिए ईश्वर आपके साथ देंगे, धनवंतरी आपका साथ देंगे, दिन दुनी रात चौगुनी आपकी कृति बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ चुप करके घुस जाओ एकदम से आयुर्वेद में, विद
1: आयुर्वेद
0: डेडिकेशन, नॉट विद फ्रस्ट्रेशन, विद डेडिकेशन एंड हैप्पीली।
1: क्या बात है, आपकी इन बातों को सुन के तो वाकई बिल्कुल जोश से भर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन
0: बहुत बहुत
1: किया।
0: शुभकामनाएं सब बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एफएम रेनबो को, प्रियंका जी को धन्यवाद, हमें इस तरह से आप बुलाते रहते हैं, मौका देते हैं अपनी बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: जी ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर,
0: वेलकम।
1: जी नमस्कार। जी हाँ जनाब, अगर आप भी करियर इन आयुर्वेदा में एंटर करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं आयुर्वेदा के क्षेत्र में, तो कई सारे जॉब ऑप्शंस हैं, कई सारे कोर्सेज ऑप्शंस हैं जो आपके सामने हैं। बस आपको एक सही सोच के साथ इस क्षेत्र में आना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों

के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो करियर पाथवेज, करियर इन आयुर्वेद। और आयुर्वेद की बात हो तो भारत का गौरव है आयुर्वेद। हजारों सालों से स्वस्थ जीवन की गारंटी देता आयुर्वेद विज्ञान, और आज आयुर्वेद विज्ञान भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्वस्थ जीवन के लिए जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बन रहा है। हर साल लाखों विदेशी आयुर्वेद विज्ञान से स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए भारत आते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सभी तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियों के सफल इलाज के लिए आयुर्वेद के महत्व को स्वीकारा है। और आज करियर पाथवेज में करियर इन आयुर्वेदा हमारे साथ कई सारे कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज की बात की जाए तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है जो 5.5 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी 5.5 साल का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद, मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेद, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन आयुर्वेद फार्मेसी है। इसी के साथ साथ आप डायरेक्टोरल डिग्री की बात की जाए तो डायरेक्टोरल डिग्री के कोर्सेज भी कर सकते हैं जिसमें एमफिल और पीएचडी आते हैं। क्या कुछ बन सकते हैं आप और किस क्षेत्र में जा सकते हैं, तो आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इन आयुर्वेदा, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेदिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर ऑफ आयुर्वेदा बन सकते हैं, पंचकर्म सेंटर में सुपरवाइजर के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं, आयुर्वेद फिजिशियन बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेद थेरेपिस्ट बन सकते हैं, जी हाँ, और आयुर्वेद पब्लिकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। भारत में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ा जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर राजस्थान, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर गुजरात में ये है, और सेंट्रल आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ डॉक्टर एन आर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी असम, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार में है, श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, साथ ही गवर्नमेंट धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और एंड हॉस्पिटल उज्जैन एमपी में भी है। इसके साथ साथ कई सारे और कॉलेजेस हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट की परीक्षा पास करने के बाद। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर बहुत शानदार है, बस आपको सोचना है और ठानते हुए आगे चलना है कि आपको इसी क्षेत्र में ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को छूना है। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स आपके साथ रहेंगी सुषमा शर्मा।

उन्होंने नीट पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एड मिलिबैंड को ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणय को पहले दौर में मलेशिया के लियोन जून हाओ से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार एफएम रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर ये है सुषमा की वाणी और लेकर आ गई है सिटी लाइट्स, जहां शाम होगी खूबसूरत और मैं रहूंगी आपके साथ। गाने भी मजेदार होने वाले हैं और साथ ही साथ आपको मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज ये सुषमा सुषमा तुम इतने दिनों में क्यों आई हो। अरे भाई आ गई हूँ, पिछले महीने नहीं आई थी ना। कोई बात नहीं, अब इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं आ गई हूँ आपके साथ। तो खैरियत आपकी कैसी है, मेरी कैसी है, ये कैसे पता चलेगा। फिर भी सिटी लाइट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो तो आपको पता ही है, 9868107070, अपनी खैरियत के बारे में मुझसे बात कर सकते हो।

अब फिलहाल थी लेकिन अब नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर। और सिटी लाइट्स की जब बात होती है तो उसमें वेदर जरूर शामिल होता है। बिल्कुल, मौसम के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। मौसम से तो हमारे देश की जो धरती है वो भी डिपेंड करती है उस पर कि भाई बारिश होगी तो हमारी जो फसलें हैं वो लहलाएंगी। और जो दिल्लीवासी हैं अगर उनके यहाँ की बात करूँ टेम्परेचर कैसा रहेगा तो भाई 30 डिग्री जो टेम्परेचर वो बता रहा है। लेकिन बारिश सुबह सुबह तो बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन कल के बारिश की अभी कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि बहुत हैवी रेन हो सकती है। लेकिन हाँ, मानसून जब शुरू हो जाता है तो बारिशों का आना लाजमी होता है, तो आप हमेशा तैयार रहें अपनी बारिश के लिए, यानी छतरी के साथ तैयार रहें बारिश का आनंद लेने के लिए, और अपना ख्याल जरूर रखें। और घर में जब सीलन जैसी स्मेल आने लगे ना तो उसके लिए आप खिड़की दरवाजे कभी कभी खोल दिया करें, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी चीजें खराब भी होने लगती हैं। तो बारिश का आनंद लें लेकिन घर की चीजों को भी संभाल के रखें।

दोस्ती का मौसम तो आ गया है, लेकिन दोस्ती के मौसम में और किससे दोस्ती करनी है वो है हमारा ट्रैफिक, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं ट्रैफिक से दोस्ती कर ही लेते हैं। जहां जाना चाहें वहां रास्ते कभी खाली मिलते ही नहीं हैं। अब देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी जाम आपको मिल सकता है। सीपी अगर घूमने आ रहे तो थोड़ा रुक जाइए, अभी कुछ दिन तो वैसे भी रुक जाइए, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा से हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आपको थोड़ा थमना भी पड़ता है। अब भगवान दास रोड की तरफ अगर तिलक मार्ग की तरफ आप जा रहे हैं आईटीओ की तरफ, तो इस रोड पर आपको हल्का ट्रैफिक ज्यादा मिल सकता है। इंडिया गेट का जो गोल चक्कर है यहां भी हल्का ट्रैफिक है, तो थोड़ा ध्यान दें। शेरशाह रोड है इस तरफ भी, और सुब्रमण्यम भारती मार्ग यहां पर भी पूरा रेड रेड हमारा गूगल मैप दिखा रहा है, तो जहां तक मैं बता सकती हूं वो आपको बता रही हूं। फिर इसके बाद लोकमान्य मार्ग, जो लोकमान्य कल्याण मार्ग, यहां पर लंबा ट्रैफिक दिखा रहा है, और आगे भी सफदरजंग की तरफ बहुत ट्रैफिक है। और किस तरफ है ये पंचशील मार्ग, यहां भी बहुत गोल चक्कर के आसपास काफी ट्रैफिक है, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं। इसके बाद है त्यागराज मार्ग, टूटू रोड, कामराज रोड, ये सारे रोड्स भी रेड रेड नजर आ रहे हैं, यानी कि जहां भी लाल है वहां हैवी ट्रैफिक है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि जब 5:15 हो जाते हैं तो ट्रैफिक होना लाजमी भी हो जाता है, सभी लोगों की छुट्टी हो जाती है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि भाई वो अपनी गाड़ी से ना आके रेगुलर, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आप अवॉइड नहीं कर पाते तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मेट्रो के जो गेट्स हैं अभी काफ़ी खुले हुए हैं, मैं भी आई थी पटेल चौक

मेट्रो स्टेशन से, तो मुझे तो दोपहर में खाली मिला था, गेट ओपन थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई गेट खुले हुए हैं या नहीं, राजीव चौक का खुला हुआ है या नहीं, तो अभी पटेल चौक की तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि दोपहर 1-1.5 बजे तक तो खुला ही था। एनीवे, ट्रैफिक की बात हो गई, और भी हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए।

आपने व्हाट्सएप किया कि नहीं ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए पूछना, क्योंकि व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपके नाम भी पढ़ सकती हूँ प्रोग्राम के लेकिन एंड में, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में सभी व्हाट्सएप को लेना कोई जरूरी नहीं होता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, मैं हाजिर होती हूँ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: बिल्कुल, और मैं हूँ सुषमा शर्मा और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स।

वो तो मैं हूँ, नो डाउट। आप भी बहुत खूबसूरत हैं जनाब, कुछ और मत सोचिए। मैं हूँ अपनी फेवरेट, ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए।

छोटे बच्चों की अगर चेहरे पर चश्मे लग जाते हैं किसी कारण से, तो फिर कहीं ना कहीं वो उनकी खूबसूरती और वैसे भी कंफर्टेबल एक जो जोन होता है उसको स्पॉइल कर ही देते हैं। अब मायोपिया की बात करें तो अक्सर ये अनुवांशिक भी माना जाता है, लेकिन कई कारण माने जाते हैं कि बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर पर बहुत देर तक वीडियो गेम खेलते रहते हैं, स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करने तक से लेकर बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि नज़दीकी मतलब कहीं ना कहीं स्क्रीन ज़्यादा देखने से भी इसका असर पड़ सकता है। और कुछ जो स्टडीज हैं वो ये भी कहते हैं कि स्कूल के काम के बढ़ते दबाव के कारण कई बार स्कूली बच्चों में निकट दृष्टि जो है उसका जो दोष होता है वो उसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ भी गया है। इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाई के दौरान बार बार आंखों को आराम देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए बीच में ब्रेक भी होना चाहिए। और कई बार बच्चे जो घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं क्योंकि डिजिटल युग ने बच्चों की ऐसी पीढ़ी को जन्म दे दिया है जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अब घर पर रहने लगे हैं और बाहर जाते नहीं, क्योंकि दोस्त ऐसे हैं जो बहुत कम हैं, वो भी दोस्त आपस में वीडियो गेम के जरिए एक दूसरे से ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती हों, क्योंकि जब घर से बाहर आप नहीं निकलेंगे तो विटामिन डी की कमी आप में हो ही जाएगी और वो बहुत ज़रूरी है आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए।

आ ही जाएगी और बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूं वैक्सीन की। क्योंकि भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। पहली वैक्सीन क्यों डेंगा, जी हाँ, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से बाजार में उतारने की मंजूरी मिल गई है। और जापान की जो बायोफार्मा कंपनी है टाकेडा की वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए ये लगाई जा सकेगी। और खासियत यह है कि इसे लगवाने से पहले जांच कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पता लगाना होता है कि व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है या नहीं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। और वैक्सीन 2 डोजेस में लगाई जाएगी जिनके बीच 3 महीने का डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और कंपनी कहती है कि वैश्विक और भारतीय क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर इसे मंजूरी मिल चुकी है। और ये भी दावा है कि वैक्सीन जो है डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा देने में आपकी मदद कर सकेगी, और संक्रमण के साथ साथ आपको जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है उसके जोखिम को भी ये कम कर देगी। यानी जादू भरी वैक्सीन आपके लिए आ ही जाएगी। सिटी लाइट्स, आप सुन रहे हैं अपने दोस्त सुषमा के साथ ओनली ऑन FM रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी किरण हो सकती है, लेकिन मैं हूँ आपके साथ सुषमा। और एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास वापस।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत सारी मुहिम भी चलाई जाती हैं और चलाई जा रही भी हैं। और परिवर्तन अगर हम बात करूं, क्योंकि व्यावसायिक वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। और आपको पता है कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ये दे दूं कि योजना के तहत BS4 या उससे नीचे के जो पुराने ट्रक हैं, बस और मालवाहक वाहनों को स्क्रैप कर BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई वित्तीय प्रोत्साहन भी मिलेंगे। और हल्के मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन पर 10 साल तक का मोटर वाहन टैक्स या फिर और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट और 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से छूट और ईंधन वाउचर का उनको लाभ भी मिल सकता है। तो ये एक इनिशिएटिव्स होते हैं जहां कमर्शियल जो हमारे वाहन होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स इसलिए मिलते हैं ताकि देश को, हमारे शहरों को और भी ज्यादा पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके।

से जुदा है हमारा आकाशवाणी और आपको पता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी इंडिया हर वर्ष 23 जुलाई को भारत में मनाता है हमारा ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और 23 जुलाई बस आने ही वाला है आपके लिए जल्दी ही यानी कि दो दिन बाद कह सकती हूँ बल्कि एक दिन बाद परसों ही है, तो जरूर सेलिब्रेट करें। आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास, ये है कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी और उस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने तत्कालीन बॉम्बे से यानी जो अभी मुंबई है से अपना पहला रेडियो प्रसारण किया था और यही सेवा बाद में सरकारी नियंत्रण में आई और आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के रूप में ये विकसित हुआ। जानते हैं सब लोग कि रेडियो ने भारत के दूर दराज क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक शिक्षा, समाचार, मनोरंजन और बहुत सारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में लोगों तक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी रेडियो संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी बना। और आज सब जानते हैं कि डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी सरल पहुंच और विश्वसनीयता के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है।

सिर्फ रेडियो, एक ऐसा माध्यम जो दिल से दिल तक की आवाज पहुंचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गवाह है ना, हम सब इस चीज के गवाह हैं। सिर्फ चांद तारे नहीं, हम भी हैं।

चांद तारे तो गवाह हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर भी गवाह हैं सिटी लाइट्स के, जिसमें सतपाल वर्मा जी गिदरबाहा पंजाब से जुड़े रहे, वंदना जी मध्य प्रदेश से जुड़ी रही हमारे साथ, और प्रमिला जी कर्नाटका से जुड़े रही मेरे साथ, और भी बहुत सारे लिसनर जिसमें दानिश खतौली से जुड़े रहे, ये सब इस वक्त मेरे साथ जुड़े रहे मेरे प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।

बिल्कुल भगवती भी आ गई हैं अगले प्रोग्राम को लेकर, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। तो जुड़े रहेंगे आप उनके साथ। मैं सुषमा अगले ट्यूसडे आपसे फिर मिलने आऊंगी सिटी लाइट्स पे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दाओकोआ ने स्कोपजे में द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने नई दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल के दावों को भी खारिज किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अवसंरचना और सड़कों के रखरखाव, निर्माण तथा दैनिक उपयोग से जुड़े डाटा को प्रमुख सरकारी अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा जारी की। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया, अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के लियोन जुनहाओ से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में भारत की ही उन्नति हुडा से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।

कहते हैं तस्वीरें जो है ना वो यादों को संभाल कर रखती हैं, लेकिन कुछ खुशबुएं, कुछ तरह की जो महक होती हैं वो यादों का दरवाज़ा बिना दस्तक दिए खोल देती हैं। कभी गरम गरम पराठों पर लगते देसी घी की खुशबू, कभी पहली बारिश में भीगी मिट्टी से जो आती है ना सौंधी सौंधी सी वो वाली खुशबू, कभी जो है जो बिल्कुल नई नई बुक्स और कॉपीज़ होती हैं उनसे जो एक अलग तरह की महक आती है वो, या फिर दादी नानी के घर में सुबह सुबह जलती अगरबत्ती की खुशबू। दादी नानी के अपने घर में भी हो सकता है जलती हुई, जैसे सुबह सुबह जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू जो है, बस एक पल में जो है हम फिर से वही छोटे वाले हम बन जाते हैं। तो आज का जो मैसेज मसाला मिक्स है ना वो थोड़ा सा महकता हुआ, थोड़ा सा बचपन वाला है। तो आज का सवाल है कि ऐसी कौन सी खुशबू है जो आपको पल भर में अपने बचपन में ले जाती है। उस खुशबू के साथ जुड़ी कहानी भी ज़रूर लिखिए ना, और कभी कभी जो यादें जो है ना आंखों से नहीं सांसों से लौट कर आती हैं। तो जल्दी से अपना मैसेज भेजिए, आपका नाम, आपका शहर और वो खुशबू जिसने आज भी आपके बचपन को कहीं संजो कर रखा है यादों में, वो शेयर कीजिए हमारे साथ। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9848107070, 9868107070 है नंबर, और मैं हूँ भगवती, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स।

जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से कहती हैं कि गाने इन्हें पसंद आ रहे हैं। कहते हैं कि ये है आकाशवाणी रेनबो, जब तक जागो सुनते रहो, अपनी टेंशन दूर करो, अपनी मस्ती ना मिस करो। तो और साथ में कह रही हैं कि जो है इन्हें नमक मक्खन का पराठा जो होता है और वो दूध की मलाई के साथ जो है खाना, जब भी खाते हैं तो इन्हें अपनी मम्मी की माँ की याद आती है। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते हैं गुड इवनिंग शिव संध्या, गुड इवनिंग टू यू शिव संध्या जी। और कहते हैं हमारे बचपन की खुशबू जो है वो हमारे जो अभी भी बची हुई है, जिसे भुला नहीं पाए है, वो थी जो ओल्ड साबुन, कुछ लिखा ओल्ड रियल साबुन आता था ना नहाने का, उसकी खुशबू आज भी हमें याद है। अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं मुझे बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू जो है, बचपन में जो मिट्टी में खेल खेल के जो है मिट्टी के घर बनाया करते थे बचपन में, खेल खेल में, उनकी याद दिलाती है। और गुलाब के फूल की महक, बचपन की से जो हम बगिया से फूल तोड़ कर लाते थे तो गुलाब के फूलों की महक जो है मुझे वहाँ ले जाती है। हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कहते हैं कि बारिश की बूंदों के साथ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आज भी बचपन की याद दिला देती है। और साथ ही घर के पास मंदिर है तो वहाँ की जो अगरबत्ती की खुशबू है ना, वो तो बस क्या बात है। सुखलाल बाला फ्रॉम फलाकाटा वेस्ट बंगाल कहते हैं कि शेफाली के जो फूल है उसकी जो सेंट है वो हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा लगता है उसे जो है महसूस करना। कई तरह की जो सुगंधें हमारे आसपास रहती हैं, जरूरी नहीं कि वो किसी परफ्यूम की हो, वो रसोई से आती हो सकती है, जैसा हमने कहा।

ये हैं सोनू, कहाँ से हैं लिखा नहीं है इन्होंने। कहते हैं कि इन्हें जो है मैसेज मुझे बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो जो जिस्ट जो उससे मैं मतलब अंदाज़ा लगा पा रही हूँ वो शेयर करती हूँ आपके साथ। इसके साथ कहना चाह रही हूँ कि इन्हें सोया बड़ी कहीं बनती थी इनके आसपास, तो आज भी जब स्टोर में वो दिखती है उसकी महक जो है इन्हें अपनी उस समय की याद दिलाती है। और ये मैसेज है कविता का देवभूमि उत्तराखंड से। कहते हैं कि घर पर बनने वाले घी की महक दूर तक आती थी और खुशबू से ही जो है भूख लग जाती थी। होता है ना कुछ खुशबू में ऐसा जादू, अगर वो ख़ास तौर पर वो अगर खाने की चीज़ों की खुशबू हो ना, तो मतलब उसकी महक से आपको अचानक से लगता है कि मतलब भूख लग गई है या भूख बढ़ गई है। ये मैसेज है अंशी शर्मा का हस्तिनापुर मेरठ यूपी से। कहती हैं कि बचपन से रिलेटेड ऐसी महक की अगर बात हो रही है तो जो है कहती हैं हमारे घर में मिट्टी की हांडी में जो गांव में अंगीठी पे सारा दिन दूध पकता था ना, उसकी महक मुझे आज भी याद आती है।

और जब वो खाना खाने के साथ वो हांडी में पका दूध मिलता था, और फिर उसके बाद जो है उसके अगले दिन जो है उससे छाछ बनाई जाती थी, और वो भी जो है इन्हें बहुत पसंद आती थी, कह रही हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है राहुल का, इंदौर से। कहते हैं कि मेरे लिए बचपन की सबसे प्यारी खुशबू है पहली बारिश में भीगी मिट्टी की। जैसे ही मिट्टी की सौंधी महक आती है याद आ जाता है कि कैसे हम बारिश में कागज़ की नाव जलाते थे और घर आकर मम्मी की डांट भी खाते थे। राहुल, जो ये मिट्टी की खुशबू और मम्मी की डांट का जो एक कॉम्बो है ना, ये बहुत कॉमन वाला है। मतलब बारिश में भीगने के लिए डांट, कपड़ों में कीचड़ लगने पर डांट, कपड़े गंदे होने पर डांट, गीले कपड़े ना बदलने पर डांट। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, और मैं हूँ भगवती।

मैं गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल यादव बोल रहा हूँ। लिखते हैं, कहते हैं कि हमारा तो खुशबू से बहुत पुराना नाता है, और कहते हैं मुझे बचपन में ले जाती है बारिश की के बाद मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, वो खुशबू आते ही लगता है फिर से गलियों में दौड़ रहा हूँ। ललित राणा डेरावासी पंजाब से कहते हैं कि जो है मेरे बचपन की एक छोटी सी याद ताज़ा हो जाती है, जब मैं सुबह घर से नौकरी के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में एक बेकरी की दुकान पड़ती है, बेकरी में बनने वाली ताज़ा ब्रेड बन और रस की गंध अक्सर कुछ समय के लिए बचपन की यादों में ले जाती है। उफ, आई लव दैट। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कहाँ से है जी, बताते हैं, रवि जोशी हैं मेरठ से, कहते हैं कि खेतों में बारिश के बाद की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मुझे बचपन की याद दिला जाती है। और ये हैं मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, कहते हैं मेरी माँ रमज़ान से पहले आते ही जो है आटे की सेवई बनाती थी जो लगभग पूरे महीने चलती थी, पूरे महीने खाते थे। जब पुलाव बनता था तो उसकी खुशबू भी महसूस करता हूँ। आज हमारे बीच नहीं है पर उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जो खुशबू है ना, इनके साथ जो है सिर्फ खुशबू नहीं होती, इनके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, और उन यादों से जुड़े होते हैं हमारे वो कुछ लोग जो हमें बहुत बहुत प्यारे होते हैं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
5: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। आपके साथ हूं मैं भगवती, और मैसेज करने के लिए जो नंबर है वो है 9868107070। और मैसेज किस विषय पर कर रहे हैं आज आप? अब तक तो आप जान ही गए होंगे, मतलब कोई खुशबू जो है, जो आप अगर आज जो है महसूस करते हैं, तो वो जो है किस याद की तरफ आपको खींचती है, उससे आपको कौन सी जो है आपकी कौन सी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है, वो आप बता रहे हैं आज हमें। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी कहते हैं कि आज हल्की बारिश हुई। सेम टू सेम जी, हमारे यहाँ भी हुई। कहते हैं मौसम सुहाना है, मस्त मौसम है, बारिश की बूंद जब पेड़ों पर पड़ती है तो मोतियों सी लगती है। बिल्कुल लगती है जी, लेकिन मतलब जिस खुशबू की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी तो कुछ बताइए ना, कि मतलब कौन सी खुशबू आपको किस चीज़ की ओर ले जाती है, किस चीज़ की याद दिलाती है। तुगलकाबाद विलेज दिल्ली से मजहर अली हैं, कह रहे हैं हमारे बचपन की खुशबू देसी घी की है। जब हमारी अम्मी घी को कढ़ाई में बहुत देर तक पकाती थी तो वो खुशबू जो है आज भी अगर कहीं मिलती है ना वैसी खुशबू, तो माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल कुछ बातें जैसे हमने पहले भी कहा कि मतलब खुशबुएं जो हैं वो हमारी यादों से जुड़ी होती हैं, और वो यादें जो हैं हमारे उन लोगों से जुड़ी होती हैं जो हमारे दिल के बहुत बहुत करीब होते हैं। ये मैसेज है शमशुल कमर राही का गंज डुंडवारा से, कहते हैं कि सबकी अपनी पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है और किसी को उसकी खुशबू, लेकिन मुझे पसंद है बिरयानी की खुशबू। जब ये खुशबू मुझे महसूस होती है तो मुझे मेरी माँ की याद बहुत आती है, क्योंकि माँ इस दुनिया में नहीं है पर उसके प्यार की खुशबू बिरयानी में महसूस करता हूँ। और मैं देख रही हूँ ज़्यादातर मैसेजेस में जो है ना जो खुशबू है वो खाने की चीज़ों की खुशबू है, और बचपन की तरफ अगर खाने की चीज़ों की खुशबू ले जा रही है ना तो वो माँ की तरफ ले जा रही है। ये मैसेज सोनू का है बिजनौर से, पहले हम कह रहे थे जगह का नाम नहीं लिखा है, तो अब ये वही सोनू जी हैं जगह के नाम के साथ हैं। कहते हैं कि मेरी परदादी दाल की सोया बड़ी बनाती थी और उसको हम खाते थे बड़ा स्वाद लेकर, तो कहते हैं कि आज भी जो है अगर उसकी खुशबू कहीं आती है तो मुझे उनकी याद आ जाती है। कहते हैं 35 साल हो गए हैं लेकिन अभी मतलब वो भूली नहीं, तो ताउम्र याद रहती है। 35 साल तो मतलब उस हिसाब से एक छोटा सा अरसा ही हुआ ना। और ये मैसेज हमारे पास है मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हरदर्शना बाज़ार ज़िला अररिया बिहार से, कहते हैं यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर, रिमझिम बुहारें पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफ़र, सरफराज अब भी तेरी याद में भीगता है ये शहर, शहर भीग रहा है यादों में। हम बात कर रहे हैं जो है खुशबू में भीगने की, और वो खुशबू जो आपको किसी की याद दिलाती है, एक अलग तरह का नॉस्टैल्जिया

अंकित डोला बागपत यूपी से कहते हैं, बचपन में माँ के आंचल की खुशबू के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता था हमें। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हार दर्शना पासार ज़िला अररिया बिहार से हैं, सेम मैसेज लगता है इन्होंने दोबारा से भेजा है या हमारे स्क्रीन पर दोबारा से आ रहा है। सेम मैसेज है, बिल्कुल सेम का सेम पढ़ चुके हैं हम। हाँ, अब दूसरा वाला मैसेज लेते हैं इनका जो इन्होंने भेजा है। कहते हैं कि भीगी मिट्टी माँ का आंचल, यादों का मीठा एक बादल, कागज की नाव, बारिश का गांव, हंसी में बसता था अपना ठाँव, जीवन बदला बदले हैं रूप, पर मन में महके बचपन का धूप, जब जब कोई खुशबू आती है बचपन चुपके से मुस्कुराता है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कहते हैं, मैं बचपन में अपनी नानी के यहाँ रहा करता था, मेरी नानी के कपड़े से बड़ी सुंदर खुशबू आती थी और वो मुझे आज भी उन दिनों की याद दिलाती है। वो खुशबू जो है ना, वो स्नेह की खुशबू थी, प्यार की खुशबू थी। कहते हैं मुझे तो बचपन में पॉपकॉर्न, 1990 की बारिश में मक्का के पॉपकॉर्न की जो खुशबू होती थी ना, वो आज तक याद है। मनीष गौर तहसील ब्यावरा ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहे हैं, सच में पॉपकॉर्न जब वो बनता है ना, तो या जो बना हुआ पॉपकॉर्न भी ले लीजिए, अगर जो जिसमें कोई फ्लेवर एडेड नहीं होता ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हैं, कह रहे हैं मैं टॉपिक से हटकर

एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव बताने जा रहा हूँ कि मैं FM रेनबो जब मैं ऑफिस से जा रहा होता हूँ तो ऑन करता हूँ और ऑन रहता है गाड़ी में, और मैं जनरली मैसेज करता हूँ मंडे टू फ्राइडे। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने मैसेज किया और वो मैसेज मेरे दोस्त जिनका नाम राहुल है और सोनीपत में रहता है, उसने मैसेज सुना और मेरा नाम सुनकर वो हैरान हो गया। उसने फ़ोन करके मुझे कन्फर्म किया कि आपका नाम FM रेनबो पर अनाउंस हुआ है, क्या आपने मैसेज किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि

पूजा जयपुर से कहती है, मेरे बचपन की खुशबू है नानी के घर में बनते आम के अचार की, पूरा घर महकता था और हम चोरी छिपे अचार निकाल कर खा लेते थे। अचार तो ना जो बहाना था, मैं बताऊँ असली स्वाद तो उस चोरी का था जो पकड़े जाने के डर के साथ आता था।

हर्षवर्धन पांडे जिला पन्ना मध्य प्रदेश से कहते हैं कि जब ये 7 वर्ष के थे तो मुझे इत्र से बहुत लगाव था और जब हम किसी विवाह समारोह में जाते थे तो नए कपड़ों में इत्र लगाकर जाते थे और इत्र की खुशबू मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि ये जो है इसकी महक दूर दूर तक जाती थी। तो कहते हैं कि ये बचपन की याद जो है मुझे आज भी इत्र की खुशबू पर जो है आ जाती है। और ये हैं भुवनेश कुमार अशोक विहार दिल्ली से कहते हैं कि मेरे घर के पास एक बेकरी है और जब भी मैं जो है केक की खुशबू वहाँ से मुझे आती है तो मुझे बचपन का समय याद आता है जब मैं अपने फ्रेंड के लिए जो है केक लेकर जाता था और उसी बेकरी से वो केक आती थी, मेरे पापा मेरे लिए लेकर आते थे। और मिसबा शमशी फ्रॉम नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी कहती हैं, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। कहते जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है ना तो बचपन की सारी यादें दिल में ताज़ा हो जाती हैं। वो बारिश में भीगना और मिट्टी में खेलना कितना अच्छा लगता था। सच में ये खुशबू जो है हमें वापस वही प्यारे बचपन में ले जाती है। और नेक्स्ट मैसेज वी हैव, कहाँ से है, किनका है? हाँ, अंकित लखनऊ से कहते हैं, नई किताबों और कॉपियों की खुशबू, आज भी किसी बुक स्टोर में जाता हूँ तो कुछ मिनट सिर्फ किताबें सूंघने का मन करता है। नहीं, ये बात जो है ना घर पे मत बताइएगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि पढ़ाई कम जो है इन्होंने खुशबू ज़्यादा ली है बचपन में। यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूं आरजे भगवती।

विजेंद्र खटोल अकोला से हैं, कहते हैं कि इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहाँ भी जो है बारिश चालू है। अच्छा जी, सोनू है नहीं दीपा बिजनौर से हैं शायद, कहना चाह रही हैं, पढ़ते हैं पूरा मैसेज तो समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है। कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कभी भी बाहर जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि कैसे भी बढ़िया से बढ़िया फाइव स्टार में खानों पर आपके खाने की बात ही कुछ और है सोनू। ओहो ऐसा क्या। छत्तीसगढ़ बस्तर से शेख अनवरुल खान कहते हैं, बचपन में हमको हमारे घर वाले दिलाते रहे खुशबू वाले पेन, स्याही वाले पेन, अब इनका दौर ख़त्म हो चुका है और ये जो है उन पेन्स को याद कर रहे हैं। ठंड के दिनों में हमारे घर में ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बनता था, हलवे का आटा घी में सिकता था और उसकी खुशबू जो आती थी ना बस बहुत भीनी भीनी सी लगती थी। भेरूलाल वागतरिया ढाकर उन्हेल ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश से कह रहे हैं ये। और ये मैसेज है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह का, कह रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, आपको पसंद आएंगे कर के लिए ही तो हम बजा रहे हैं। यहाँ से एक और प्यारा सा गाना प्ले कर दिया है आपके।

वाह क्या बात है ना। आज एहसास हुआ कि यादों को जिंदा रखने के लिए ना हमेशा फोटो एल्बम की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी थोड़ी सी जो खुशबू आती है ना वो भी काफ़ी होती है। किसी के लिए पहले बारिश की मिट्टी, किसी के लिए मम्मी के हाथ का तड़का, किसी के लिए नई किताबों की महक, तो किसी के लिए दादी के पूजा घर की अगरबत्ती। आज आपके हर मैसेज ने साबित कर दिया कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर सबसे सादी सी जो खुशबुएँ होती हैं ना उन्हीं में छिपी रहती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: Welcome back to the program of Requested Music. You asked for it. And the next request this evening arrives from Kottayam city in Kerala. And this is Jayanta Karmakar, who writes, I'm cooking and also listening to the radio. Please play me any song by Venga Boys. Okay, so Jayanta Karmakar in Kottayam is in a mood for some music by the Dutch Eurodance group, Venga Boys. And the track that I've picked up is called Uncle John from Jamaica. Keeps up calling every day.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दाओकोआ ने स्कोपजे में द्विपक्षीय वार्ता की। बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने नई दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल के दावों को भी खारिज किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बृहस्पतिवार से किर्गिज गणराज्य की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे चोलपोन अता में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद सीएफएम की बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। पाकिस्तान में मॉनसून के दौरान तेज बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के लियोन जून हाओ से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान

0: बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 100

0: 96.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली,

सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की

अब से कुछ समय बाद से यानी 9 बजे से आपके साथ होंगे खुर्शीद आलम, लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। 10 बजे से सुनेगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक मिक्स लिपिका दास के साथ, और 11 बजे से आप सुनेंगे रंगे महफिल खुर्शीद आलम के साथ। और इसी के साथ आपकी दोस्त भगवती आपसे लेती है अनुमति। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अब वक्त है मुख्य समाचार का। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तर की वार्ता के बाद प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। सिक्किम के नामचीन जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की तिस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन हेड रेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी कृषि भूमि से मानसून के बाद जमा रेत को निकालने के नाम पर किए जा रहे व्यावसायिक खनन को रोकने के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। और युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमले के बाद हॉर्मूज जलडमरु मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। कहते हैं जिंदगी की कुछ बातें सिर्फ एक बार होती हैं, लेकिन उनकी याद पूरी उम्र हमेशा साथ चलती है। पहली बार किसी को देखकर दिल का जरा सा ठहर जाना और पहली बार किसी के आने का इंतजार होना और पहली बार किसी के नाम का बिना वजह बार बार याद आना, शायद यही मोहब्बत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो मोहब्बत मुकम्मल हो, ज़रूरी तो बस इतना है कि उसने हमें मुस्कुराना सिखाया हो, उसने हमें ये एहसास दिलाया हो कि दिल की भी अपनी एक दुनिया होती है। आज की महफिल उसी पहली धड़कन, उसी पहली मुस्कान और उन मीठी यादों के नाम है जो वक्त के साथ पुरानी तो हो जाती है लेकिन कभी फीकी नहीं पड़ती। और आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सदाबहार गीत से जिसने न जाने कितने दिलों की धड़कनों को अपनी धुन बना दिया है। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

और जब हम यादों की बात करते हैं तो याद है वो ज़माना जब किसी से मिलने का कोई बहाना ढूंढा जाता था। मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी दिलों की बातें एक मुस्कराहट में समझ आ जाती थी। कभी स्कूल की छुट्टी के बाद एक नज़र देखने के लिए देर तक रुक जाते थे। याद आता है वो ज़माना। कभी किसी किताब में फूल का पत्ता रख देना, या फिर कभी किसी के गुजरने का वक्त याद रहता है कि उसका घंटों इंतज़ार करते थे रास्ते में। उस दौर में शायद बातें कम होती थी लेकिन एहसास बहुत ज़्यादा गहरे थे। आज सब कुछ बहुत तेज़ हो गया है मगर दिल की धड़कन आज भी उसी रफ्तार से चलती है। जब कोई अपना अचानक सामने आता है लगता है ना कि शायद जब हमारे दिल में एहसास होते हैं तो हम अपने जज्बात भी उस शख्स के साथ बयां नहीं कर पाते। लेकिन दिल में कुछ तो होता है ना आपके भी।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। साहब, आपने कभी सोचा है कि पहली जो मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? शायद उसका मिल जाना नहीं, बल्कि उसका हमेशा याद रह जाना, ये इसकी बड़ी खूबसूरती होती है। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन कुछ जो एहसास होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर एक दिन अचानक कोई रेडियो पर पुराना गीत बजता है और लगता है कि जैसे सालों पुराना मौसम फिर से लौट आया हो। होता है ना कभी कभी ऐसा कि कोई गाना हम सुनते हैं और हम अपनी पिछली यादों में चले जाते हैं, क्योंकि वो गाना हमें उस शख्स की याद दिलाता था। शायद इसीलिए म्यूज़िक को यादों की सबसे बड़ी जुबा कहा जाता है। वो बस बिना कुछ पूछे हमें वहाँ ले जाता है जहाँ कभी हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था। अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी का भी कोई ऐसा पन्ना खुल गया है तो उसे बंद मत कीजिए। खुश यादें सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो हमें मुस्कुराना सिखा सकें।
5: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
6: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
5: उसे बताया क्यों नहीं?
6: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रहे। और साहब कहते हैं कि पहली मोहब्बत की सबसे प्यारी बात होती है उसका इजहार, बिल्कुल नहीं उसका इजहार नहीं होती बल्कि उसका इंतज़ार होती है। क्योंकि वो इंतज़ार जब घड़ी की सुइयां जैसे धीरे धीरे चलती थी, स्कूल की घंटी कब बजेगी और कॉलेज की क्लास जो है वो कब ख़त्म होगी या फिर शाम कब होगी, जब शायद एक झलक देखने को मिल जाए। होता है ना पहली मोहब्बत में ऐसा कि हर चीज़ का इंतज़ार करते हैं, स्कूल की छुट्टी का इंतज़ार होता है, कॉलेज की क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार होता है। और उस दौर में ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे हम, लेकिन दिल हमेशा कनेक्टेड रहता था और आज सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन शायद उस इंतज़ार की मिठास कहीं पीछे छूट गई। अगर ज़िंदगी में भी कभी किसी का इंतज़ार किया हो आपने, तो यकीन मानिए कि आपने मोहब्बत को बहुत करीब से महसूस किया है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो उस इंतज़ार की खामोश धड़कनों को आज भी जिंदा रखे हुए है।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

कभी कुछ कुछ बातें जो होती हैं कभी कही नहीं जाती, लेकिन फिर भी समझ ली जाती हैं। यानी एक नज़र हो या फिर कोई एक मुस्कान हो या कोई हल्का सा कोई नमस्ते आपसे कर दी और पूरा दिन जो है वो आपका खूबसूरत हो जाता है। बहरहाल शायद उस दौर में जो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उन यादों की जो हम बात कर रहे हैं, उस दौर में शब्द कम थे लेकिन एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा थे। आज हम घंटों बातें कर लेते हैं फिर भी कई बार दिल की बात जो है वो दिल तक नहीं पहुंचती। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन शायद इसलिए पुराने रिश्ते इतने ज़्यादा गहरे होते थे क्योंकि वहाँ दिखावा कम था और अपनापन जो है वो ज़्यादा था। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी याद है जहाँ बातें कम और एहसास ज़्यादा थे, तो फिर अगला गीत जो है वो आपके लिए है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: धार्मिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर। हूँ आपके साथ खुर्शीद, प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। अजाब वक्त की खूबी है ये कभी रुकता नहीं है, लेकिन उसकी एक और खूबी है वो ये कि वो अच्छी यादों को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। जो बातें उस वक्त छोटी सी लगती थीं आज वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यानी पहली मोहब्बत अगर मिल जाए तो एक कहानी बनती है, और अगर ना मिले तो एक याद बन जाती है। लेकिन सच कहूँ दोनों ही सूरतों में वो इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा जाती है। शायद यही वजह है कि बरसों बाद भी कोई पुराना गीत सुनते ही दिल जो है वो मुस्कुरा उठता है। खैर, सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार नगमा जो यादों की उस मिठास को अपने साथ लिए हुए है।

है, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और उनका तो अब आप ख्याल रखने ही लगे हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।

अभिषोणी के रेनबो चैनल पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तर की वार्ता के बाद प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। सिक्किम के नामचीन जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की तिस्था छठा चरण जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन हेड रेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार प्रत्येक संपत्ति की

स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। और युवा कार्य विभाग ने मई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। और अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। ये थे अब तक के रेनबो समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM क्लियरों पर। और एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम रंगे महफिल और मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और साहब, दिन भर की भाग दौड़ और जिम्मेदारियाँ, शोर और उलझनों के बाद कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ पल सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बिताना चाहता है। और ऐसे ही लम्हों के लिए गजलें बनी हैं। गजलें सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करती, ये दिल की थकान भी समझती हैं, खामोशी की जुबां भी जानती हैं और कभी कभी तो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती हैं। आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को

0: आकाशवाणी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आपको पता है कि सबसे अच्छी बातें जो है वो हमेशा धीरे से कही जाती हैं। बारिश कभी शोर मचा कर नहीं बरसती, बल्कि सुबह कभी आवाज़ देकर नहीं आती है। और हम ये भी जानते हैं कि मोहब्बत भी अक्सर खामोशी में ही अपना रास्ता बना लेती है। शायद इसी वजह से गज़लें जो हैं वो हमें इतनी प्यारी लगती हैं। इनमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, हर मिसरा जो है वो ठहर कर आता है और दिल में उतरने की इजाज़त आपसे खुद मांगता है। आज की दुनिया में हर किसी के पास बोलने का वक्त है, लेकिन सुनने का वक्त बहुत कम है। तो क्यों ना कुछ देर सिर्फ सुन लिया जाए, अपने दिल को, अपने एहसासों को और उन खामोशी को जो शायद कई दिनों से आपके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इसी एहसास के साथ ये बेहद खूबसूरत कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: अक्सर लोग खामोशी और तन्हाई को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तन्हाई तब महसूस होती है जब हमें किसी की कमी सताती है, कमी खलती है, लेकिन खामोशी वो लम्हा है जब हम खुद से मिलते हैं। कभी सुबह जल्दी उठकर छत पर बैठिए या फिर शाम ढलते हुए आसमान को देखें, वहाँ कोई शोर नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ सुनाई देता है। शायद इसलिए गजलें भी ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि दिल की आवाज़ में सुनी जाती हैं, और हर शेर अपने साथ जो है वो एक एहसास लाता है, और हर एहसास हमें अपने थोड़ा और करीब ले आता है। बहरहाल रंगी महफिल के इस अंजुमन में हैं आप और मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद।

जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर रोज बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनसे बल्कि बरसों बाद मुलाकात हो तब भी दिल वहीं से बात करना शुरू कर देता है जहां कभी आपने उस रिश्ते को छोड़ा था। और ऐसे रिश्तों में अल्फाज

कम होते हैं बल्कि भरोसा ज्यादा होता है। हमारी जिंदगी में अगर एक भी ऐसा रिश्ता है जहां हमें अपने होने का सबूत जो है वो नहीं देना पड़े, तो समझिए कि आप बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं। वैसे गजलें भी कुछ ऐसे ही रिश्तों जैसी होती है, उन्हें बार बार सुनने की जरूरत नहीं होती, बरसों बाद भी सुनो तो लगता है कि जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई है। बहरहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और अब ऐसी एक गज़ल जो रिश्तों की इसी नरमी और सादगी को अपने सुरों में समेटे हुए है।

जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही एक हुनर होता है। जब हम हर बात पर शिकायत करना छोड़ देते हैं तब दिल में सुकून की जगह बनने लगती है। पेड़ कभी ये शिकायत नहीं करता कि पतझड़ क्यों आया, उन्हें मालूम होता है कि बाहर फिर लौटेगी। इंसान भी अगर हर मुश्किल को आखिरी मंजिल नहीं बल्कि एक गुजरता हुआ मौसम समझ ले तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब अगला कलाम आप तक पहुंचाने की कोशिश है और ये ऐसा कलाम है जिसमें हर शेर में सब्र, एहसास और मोहब्बत की खूबसूरत खुशबू भी है, दर्द भी है, जलन भी है। आइए सुनते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लिए। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और साहब कभी आपने महसूस किया है कि सुकून हमें हमेशा वहाँ मिलता है जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, यानी मिट्टी की सौंधी खुशबू, बरसात की पहली फुहार या फिर सुबह की ठंडक या फिर किसी अपने का बिना वजह पूछ लेना कि कैसे हैं आप। बहरहाल ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत शायद यही छोटे छोटे लम्हे हैं। हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतज़ार में इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और गज़लें भी हमें ये याद दिलाती हैं कि दिल को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ दो सच्चे अल्फाज उसे चाहिए और थोड़ी सी मोहब्बत और कुछ पल सुकून के, बस इतना ही काफ़ी है। बहरहाल अब अगला कलाम आप तक पहुंचाने की कोशिश है जो दिल की नरमी और ज़िंदगी की सादगी को बेहद खूबसूरती से अपने सुरों में पिरो रहा है।

और जब कहा जाता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दो सफ़र तय करता है, एक सफ़र दुनिया का होता है और दूसरा अपने दिल का। वैसे दुनिया का सफ़र तो सबको दिखाई देता है, लेकिन दिल का सफ़र खामोशी से तय होता है। कभी कोई गज़ल सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और कभी कोई शेर सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समझ लीजिए कि वो गज़ल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके दिल तक पहुँचती है। बहरहाल अब आपसे इजाज़त भी चाहूँगा क्योंकि वक्त तो हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह आपसे एक इल्तिजा है कि अपना ख्याल रखें, और आप उनका तो ख्याल रखने ही लगे हैं जो आपका ख्याल रखते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए। खुदा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए अब पेश है अब तक की मुख्य खबरें। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की तीसता छठा चरण जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन हेडरेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू

यह क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए भाई सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो लीजिए आनंद लीजिए इन गीतों का।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, फ्रेंडों की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार हिंदी में। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की 1 तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की 36वां चरण जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन हेड्रेस टनल का एक हिस्सा ढहने से अब तक 12 लोगों की मौत। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। ये थे मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी साथी दुर्गेश और अब प्रस्तुत है, लीजिए सुनते हैं आकाशवाणी कार्यक्रम सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों

प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात। कार्यक्रम सुहानी रात का ये है आखिरी गीत और 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त दुर्गेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। मिजोरम सरकार सरकारी भर्तियों को बेहतर बनाने के लिए MPSC को मजबूत करेगी। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:03 और लीजिए अब आइए सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा कार्यक्रम भुलाए ना बने। कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है भुलाए ना बने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित कर दिया है। भारत में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

0: प्रकाश।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात्रि के 3:05 होने को हैं और अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी रेनबो पर मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

साथियों, आप सुन रहे थे मिडनाइट मेलोडीज में बॉलीवुड म्यूजिक FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है मिडनाइट मेलोडीज और इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार हमारी साथी अलमास रजा से। अगले घंटे में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।

जी हाँ साथियों, आप एक बार फिर जुड़ गए हैं FM रेनबो से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत हैं समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। सरकार ने कहा, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:02 और यह है समय आपके कार्यक्रम सारे गामा का। तो लीजिए आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, आप आनंद लेंगे कुछ खूबसूरत से गीतों का। और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 MHz पर। सुबह के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच निवेश, तकनीक और नवाचार में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

ईट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगशु को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सरकार ने बताया, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू करने की संभावना जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी साथी दुर्गेश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स नॉन स्टॉप।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।